0: ये फादर का बच्चा कौन है?
1: फादर का बच्चा नहीं सन, फादर को बाप बोलते हैं और तुम्हारा बाप तुम्हारे सामने खड़ा है।

0: ମହର୍ଷି ବ୍ୟାସଦେବ କହିଛନ୍ତି, କ୍ଷମା ବ୍ରହ୍ମ, କ୍ଷମା ସତ୍ୟ, କ୍ଷମା ଭୂତ, କ୍ଷମା ଭବିଷ୍ୟ, କ୍ଷମା ତପ ଏବଂ କ୍ଷମା ପବିତ୍ରତା ଅଟେ। କ୍ଷମା ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତକୁ ଧାରଣ କରି ରଖିଅଛି। ଆକାଶବାଣୀ କଟକ ସମୟ ସକାଳ 6 ବାଜିବାକୁ ଯାଉଛି। ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। मंत्रिमंडल ने देश में सेमीकंडक्टर की डिजाइन और निर्माण तंत्र को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि सेमीकॉन मिशन के दूसरे चरण के तहत 4,00,000 करोड़ रुपये के निवेश की उम्मीद है।
2: सेमीकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमीकॉन 2.0 माने प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमीकॉन 2.0 में 6 पिलर्स हैं। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
1: भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू हो गया है। इसके साथ ही भारत ब्रिटेन सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो गया है। सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमियों की भी क्षमता को मजबूत करेगा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते, सुरक्षा तथा रक्षा साझेदारी और गतिशीलता ढांचे द्वारा समर्थित भागीदारी की मजबूत गति को आगे बढ़ाएगी। उन्होंने ब्रसल्स में तीसरी भारत यूरोपीय संघ व्यापार तथा प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक के बाद ये बात कही। भारत और बेल्जियम व्यापार तथा निवेश, हरित ऊर्जा परिवर्तन, नवाचार और प्रौद्योगिकी, कनेक्टिविटी, रक्षा सुरक्षा, क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों के साथ साथ लोगों में परस्पर आदान प्रदान जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और गहरा करने पर सहमत हुए हैं। भारत बेल्जियम रणनीतिक संवाद की बैठक ब्रुसेल्स में आयोजित की गई। मध्य प्रदेश से पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने इंदौर से संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए पहली सीधी उड़ान को झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार

0: राष्ट्रीय मार्गों के लिए प्रति उड़ान 15 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देगी। उन्होंने कहा कि पहले किराया लगभग 24 से 25 हजार रुपए प्रति सीट था, अब ये घटकर 12 से 15 हजार रुपए हो गया है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की ये उड़ान सप्ताह में 4 दिन संचालित होगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित भारत टेक्स 2026 सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत और विदेशों के प्रमुख कपड़ा निवेशकों और उद्योग प्रमुखों से मुलाकात करेंगे। श्री यादव भारत मंडपम में मध्य प्रदेश पवेलियन का भी दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में दोपहर में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क के बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। बाद में प्रधानमंत्री जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए दिल्ली का लाल किला परिसर 15 अगस्त तक आम जनता के लिए बंद रहेगा। लाल किला परिसर में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों के बीच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने यह आदेश जारी किया है। 15 अगस्त को केवल सरकारी पास धारकों को ही लाल किला परिसर में प्रवेश करने की अनुमति होगी। अमरीकी सेना ने ईरान पर फिर से हमले शुरू करने की घोषणा की है। अमरीकी सेना की केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान में कई ठिकानों पर रात भर लगातार हमले किए गए। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की रथ यात्रा आज उड़ीसा के पुरी में शुरू हो रही है। लगभग 3 किलोमीटर की इस यात्रा का समापन श्री गुंडेचा मंदिर में होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हरा दिया है। फाइनल मुकाबले में रविवार को अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। सेमीफाइनल में पहला हाफ गोल रहित रहा। 55वें मिनट में इंग्लैंड के लिए एंथनी गॉर्डन ने पहला गोल किया। वहीं अर्जेंटीना के एंजो फर्नांडिस ने 25वें मिनट में गोल करके अपनी टीम को बराबरी दिला दी। 90वें मिनट में लुटारो मार्टिनेज ने गोल करके अर्जेंटीना को 2-1 से शानदार जीत दिलाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: कार्यक्रम सुनुछन्ति आकाशवाणी कटक केन्द्ररो।
2: अच्छा दास बाबू, आपण को घरटा 1970 रे तयार हितला राइट? हेले ए पर्यंत एते स्ट्रांग केमिति अछि?
3: अरे एटा एकदम सिंपल एवं सेथि पई मु सेतेबेले मोर विश्वास रखितली एवं आजि मध्य चेटिनाड सिमेंट उपरे
4: शक्ति जहां वर्ष वर्ष नुहे बरम पीढ़ी पाई रही थाए। चेटिनाड सिमेंट सुपर ग्रेड सिमेंट 64 वर्षर दृढ़ मूल दुआ। चेटिनाड सिमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस। आकाशवाणी
1: कटक पवित्र घोष यात्रा उपलक्ष्य प्रचार करूछु विशेष वंदना कार्यक्रम।
5: ବରଷକ ପରେ ନୀଳାଦ୍ରି ଈଶ୍ୱର, ବଡ଼ ଭାଇ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର, ଭଉଣୀ ମା ସୁଭଦ୍ରା ଏବଂ ଆୟୁଧ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ସହ ଆଜି ତିନି ରଥରେ ବିଜେ କରି ପୂରଣ କରିବେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଅଭିଳାଷ। ସେଇଥିପାଇଁ କାହିଁ କେତେ ଦୂରରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଅଗଣିତ ଭକ୍ତ, ରଥାରୂଢ଼ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ପବିତ୍ର କରିବେ ନୟନ ଆଉ ମନ। ଆପଣା ଛାଏଁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି ହୃଦୟ, ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ ହେ ଚକା ନୟନ। ତୁମେ ପରା ଅଗତିର ଗତି, ତୁମେ ପରା ଦୁଃଖ ନାଶନ, ଦେଉଳ ଭିତରେ ରହି ତୁମେ କ'ଣ କିଛି ଶୁଣିପାରୁନ?

0: business and technology domains.
1: केन्द्रीय वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयल भारत यूरोपीय संघयो मुक्त व्यापार सन्धि निष्पक्षम न्यायसंगतम संतुलितं च निरूप्य अवदत् यत् एषः सन्धिः उभय देशयो सर्वेषां क्षेत्राणां कृते परस्पर हितकरः भविष्यति। भारतीय निर्वाचन आयोगेन पंजाब कर्नाटक तेलंगाना दिल्ली इत्येतेषु नगरेषु प्रचलितस्य मतदात्री सूच्याः विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रमस्य समय सीमा विस्तारितास्ति। दिल्ली कर्णाटकयोः मतदान केन्द्र स्तरीयाधिकारिभिः प्रतिगृहं गत्वा क्रियमाणं सत्यापन कार्यं यत् अस्य मासस्य नवविंशति दिनांक पर्यन्तं निर्धारितमासीत् अधुना आगामी मासस्य अष्टम दिनांक पर्यन्तं प्रवर्तिष्यते। पंजाब तेलंगाना इत्येतयोः तु प्रतिगृहं गत्वा सत्यापन कार्यं आगामी मासस्य तृतीय दिनांक पर्यन्तं एव अनुवर्तिष्यते। विश्वविख्याता पुरी रथयात्रा अद्य ओडिशा राज्यस्य पुरी नगरे भगवतः जगन्नाथस्य तस्य ज्येष्ठ भ्रातुः बलभद्रस्य अनुजायाश्च देव्याः सुभद्रायाः सह आरभ्यते। अस्याम् वार्षिक रथयात्रायाम् जगन्नाथः भगवान् स्वभ्रात्रा भगिन्या च सह रथेषु समारोह्य भक्तेभ्यः दर्शनं दास्यति। फीफा विश्वचषक फुटबॉल स्पर्धायाः द्वितीय उपांत्य चक्रे अर्जेंटीना दलम् अमेरिका देशस्य अटलांटा क्रीडांगणे इंग्लैंड दलम् 2-1 इत्यंकांतरालेन पराजित्य निर्णायक चक्रे प्रवेशम अकरोत्। जुलाई मासस्य 29 दिनांके निर्णायक चक्रे अर्जेंटीना दलम् स्पेन दलम् सम्मुखी करिष्यति। भारत इंग्लैंड देशयोः मध्ये एक दिवसीय श्रृंखलायाः द्वितीय स्पर्धा अद्य कार्डिफ नगरस्य सोफिया गार्डन्स क्रीडांगणे भविष्यति इति वार्ताः।
2: कार्यक्रम सुनुछन्ति आकाशवाणी कटक केन्द्ररो सुनंदु अछि प्रचारित हेबाकु थिबा कार्यक्रमर सूचना अमर स्वास्थ्य प्रचार कर सका 7:10 शुणे आलोचना रथजात्रा समय स्वास्थ्य सतर्कता आलोचना करें डाक्तर नंदा द्विवेदी भिकारी चरण बड़ों कंठरी जगन्नाथ भजन शुणी सका 7:25 शखक्षेत्र पुरीठारे अनुषित महाप्रभु श्रीजगन्नाथ विश्वप्रसिद्ध पवित्र घोष जात्रार प्रत्यक्षदर्शी धारा बरणी शुणी सका 7:30 सका 7:59 सका 8:15 दिन गोटे 49 दिन 2:15 दिन 2:30 दिन 2:42 रथ टणा शेष होगा पर्यंत धारा बरणी प्रदान करेंगे डॉ शांतनु कुमार रथ डॉ नरेश चंद्र दास डॉ कल्याणी नंदी डॉ हरिहर काननगु एवं श्री प्रताप चंद्र त्रिपाठी ओडिया कथचित्रर गीत प्रचार करिवो अपराह 5:00 एवं राति 7:02 युवमणी संध्या 5:30 शुणे रथचित्र उपलक्षे विशेष रूपक गोस्वामी तुलसीदास विरचित श्रीरामचरित मानसर 80तम भाग संध्या 6:10 आकाशवाणी ब्रह्मपुर केन्द्र द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम विकास मंत्र संध्या 6:30 जिला हालचाल शुणे संबलपुर जिलार हालचाल राति 7:25 कृषि संसार राति 7:30 शुणे आलोचना खरीफ धान फसल जैविक उपाय रोग पोक दमन आलोचना करेंगे तापस रंजन साहू हिंदी कथचित्रर गीत राति 8:02 पवित्र रथजात्रा 2026 बेतार बरणी शुणी राति 8:15 ओडिसी गीत राति 8:30 शिल्पी नीलिमा पंडा कार्यक्रम करेन्ट अफेयर्स प्रचार कर राति 9:30 रिलेकरी प्रचार कर आकाशवाणी दिल्ली रो महाप्रभु श्रीजगन्नाथ पवित्र घोषयात्रा उपलक्षे शुणी गीतिनाट्य श्रीगुंडीजा राति 10:00 रचना एवं प्रयोजना शारदा प्रसन्न नायक संगीत भुवनेश्वर मिश्र शुणिले आज प्रचारित होगा कार्यक्रम सूचना आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद शुणिपारे टिके परे।

जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। सर्व पाप हर मुख्य दायक ए पुण्यमय श्रीक्षेत्र अनुष्ठित होता ए पतित पावन रथयात्रार धारा बरणी शुणा पाई आम राज्यर पुरपल्ली तथा विश्वर कोण अनुकोण से आग्रह सहित अपेक्षा करगणित प्रिय श्रोता बंधु मान पुणी थे जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। वर्षकर बहु प्रतीक्षित मुहूर्त एवं उपगत हो सबुआड़े उत्कंठा उन्मादना एवं उत्साह भूमि भूमा पर्यंत समस्ते चलचंचल एक अपूर्व उत्सुकता और भक्तिक आवेगरे समस्त दृष्टि निबद्ध नीलकंदर उपरे भक्त दर्शन करिवे महाप्रभु को, महाप्रभु दर्शन करिवे भक्त को। आबाल वृद्ध वनिता आज जे

0: पवित्र पावन मुहूर्त से मुहूर्त समस्त भाव उन्मादित करे एभली भाव ग्रासित करके रखे जे से आनंद विभोर अवस्था रे अन्य व्यक्तिगत दुख कष्ट क्लेश ये सब किछि अनुभव हुए ना तेणु श्रोता बंधु मु आपण मानकु एतिके सूचना देली एवं रथ चारिपटे सकाळे आमे देखिलु ए राधावल्लभ मठ उपरे आमर जो प्रथम केन्द्र हेछि ए प्रथम केन्द्र रे आमे देखिलु बहु लोक रथर जो बारिकेड हेछि रथरे दुईटी कडन थाए गोटे हूँ इनर कडन बोली कहा जाए भितर कडन आ गोटे हूँ बाहर कडन आउटर कडन ए कडन को लागिकिरि जो बारिकेड कराहिछि से बारिकेड पाखरे सकाळु हजार हजार श्रद्धालु आसिकिरि जमा हेतिले जहाँफलरे गमनागमन पाई मध्ये असुविधा होतला ताकु निजे पूरी पुलिस एसपी प्रतीक सिंह से निजे आसिकिरी से लोक मानकु दूर को घुंचेले एवं रास्ता सफा कले कारण महाप्रभुंकर पहुंडी हवा समय हेला बेलकु बहुत भिड़ हो जिबो सेतिपई गमनागमन असुविधा हो दलाचकटा होबार मध्ये आशंका अछि तेणु से सब गुडा को व्यवस्थित करबा पई तांकर आरक्षी वाहिनी को सहित पुलिस एसपी मध्ये व्यक्तिगत भाव में ताकु तदारख करिकिरी से लोक मानकु दूर को जिबा पई से मानकु परामर्श देले एवं आउ गोटे कथा जानती पुलिस हाथ में आम देखु सब ठेंगा थाए बाड़ी थाए किंतु आज कौन पुलिस हाथ में ठेंगा बाड़ी ना से माने गोटे गोटे मोटा कागज मोड़ा धरी जो मोड़ाटी केवल शब्द कैर किंतु क्या देह बाजिले आघात दिए ना तेणु गोटे प्रतीक भाव आम प्रतीक सिंह एसपी महाशय मध्य गोटे मोटा कागज मोड़ा को धरिकी समस्त हाथ हल हल दूर को जीवाई नवेदन करार आम देखिलु तो यही भाव में जहाँ श्रीक्षेत्र कथा मोर दृष्टि पथारू रही जहाँ देखी थी आपण को सेटा अनुभव कली कहली आमर दुईज जो अन्य भाष्यकार अच्छा आमर डॉक्टर नरेश चंद्र दास अच्छा डॉक्टर कल्याणी नंदी अच्छा से माने दुई दुई पद आपण मान बाणी महाप्रभुंकर बाणी सेवा यही मध्यम टी शुणे और द्वितीय केन्द्र को जीव से डॉक्टर हरिहर कानून महाशय अच्छा प्रताप त्रिपाठी महाशय अच्छा से ही स्थान से अनुभव से आपण मान निकट कहे बर्तमान मुझे अनुरोध कर डॉक्टर नरेश चंद्र दास महोदय को से माइक्रोफोन निभुंकर बाणी श्रोता मान शुणा
1: जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ परम पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र पुरीरु आपण माने सीधा प्रसारण माध्यम रे महाप्रभुंकर ए दिव्य कथा दिव्य गाथा को श्रवण करुछंती एवं मने मने महाप्रभुंकर सानिध्य लाभ करुछंती महाप्रभु बसिछंती ए पर्यंत अनसर गृह रे अणसर गृह रु बाहरी नहांती महाप्रभु आसीबे बड़दांड को धन्य करिबे भक्त माने चाहिकरी बसछंती जेतेबेले आज मु घर आसुथिली देखुथिली बहु संख्यारे लोक गोटे गोटे जरी घोड़ी हेकर आसुछंती अविश्रांत भाव में वर्षा झरुची आकाशरु किंतु से माने ताकु सामान्यतम खातिर नकरी मुंडरे गोटे गोटे जरी पकई से माने बड़दांड अभिमुखे यात्रा करुछंती मनरे टिके मात्र ग्लानी नाही जे आमे कोठी के आसिलु कोठी केमिति प्रभु को दर्शन करिवु कोठी रहिवु कोठी खाइबु कोठी शौच हबु ये सबु चिंता सते कि से प्रभु को ऊपर छाड़ी दे से माने समस्ते आज श्रृंखल रहित हो जाइछंती जहाँ किसी समय पूर्व आपण शुणुले सबू बंधन मु काटी देली प्रभु आपणक बंधन में आमको रखतु तेणु आज महाप्रभु बंधन में आम मैंने समस्ते अच्छे कारण आज समस्ते सांसारिक बंधन को काटिकी प्रभु पाखकु छुट्टी आसी
0: सब बंधन मो तुटाई हे प्रभु तुमरी बंधन रख
1: वैकुंठनाथ ब्रह्मचारी अति सुंदर ये पदटी समस्त को विमोहित करे तेणु आज तुमरी बंधन रे आमे पढ़ीचु प्रभु तेणु तुम्हें किभली भाव रखिब से तुम उपर निर्भर करे जे ये संसार को सृष्टि करिछि जे ये संसार को पालन करुछंती जे ये संसार जेतेबेले प्रलय हब निज देहरे ताको लीन करुछंती से ही अखिल ब्रह्मांड नाथ परम कारुणिक श्री जगन्नाथ महाप्रभु आज बड़ दांड को छुट्टी आसिबे एवं भक्त मान सहित आखि के आखि मिशिब भक्त मानकर अनेक दिन जो दुख जंत्रणा सबू पार्श्व रही जब सब खंडित हब तेणु आज समस्ते से आशा पोषण करी आसी महाप्रभु निकट को बड़ दांड को बड़ ठाकुर पाखक आसी देखिबे बड़ देउल देखिबे बड़ दांड देखिबे बड़ जात्रा तेणु आज से बड़ आशा नहीं करी ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ

0: ଦେଖୁଛି, ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ସତେ ଯେମିତି ଏହି ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଭିତରେ ଠୁଳିଭୂତ ହେଇଛି, ରୁଣ୍ଡିଭୂତ ହେଇଛି। ଆଜି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ସୁସଜ୍ଜିତ, ତିନି ରଥ ବିଜେ ଖଳାରେ ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ସତେ ଯେମିତି ରଥପଥ ଏକାକାର ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ କେନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ରହିଛୁ, ଆମକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଗୋଚର ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ବୃଷ୍ଟି କରାଉଥିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ତାଙ୍କୁ କହି, ଯେଉଁ ମୂଷଳଧାରାରେ ବୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା, ଯାହା ଆମର ଏକ ନମ୍ବର ବୁଥରୁ କହୁଥିଲେ ଶାନ୍ତନୁ ବାବୁ, ତାହା ହିଁ ସତ୍ୟ। କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଏ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା, କାରଣ ସିଏ ପରା ଏ ମର୍ତ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠର ଜୀବନ୍ତ ଠାକୁର, କଥା କୁହା ଠାକୁର, ସେ ପରା କଥା କହନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଭାବ ଡୋରିରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ, ଯଦି ସେଇ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା, ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଠାକୁର କଳିଯୁଗରେ କେତେ ମହାନ।
1: ଶୁଣୁଥିଲି ଶଙ୍ଖକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ଘୋଷ ଯାତ୍ରାର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ। ଏହି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ଧାରାବିବରଣୀର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଶୁଣିପାରିବେ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ପ୍ରଚାରିତ ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ପରେ ପରେ। ଆକାଶବାଣୀ କଟକ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
2: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
3: चल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो एलिवेटेड सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। रेल मंत्रालय ने टिकट बुकिंग में आसानी के लिए IRCTC की नई वेबसाइट शुरू की। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज से शुरू। अमरीका ने होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए। अर्जेंटीना फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंचा, दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। फाइनल में रविवार को स्पेन से खेलेगा और भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम कार्डिफ में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो एलिवेटेड राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने वाराणसी में सड़क संपर्क बेहतर बनाने और भीड़भाड़ तथा यात्रा समय को कम करने के लिए इन परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में कल ये जानकारी दी।
5: सेमिकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमिकॉन 2.0 माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमिकॉन 2.0 में 6 पिलर्स हैं। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
4: रेल मंत्रालय ने टिकट बुकिंग आसान और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC की वेबसाइट का नया स्वरूप जारी किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि IRCTC ने इसमें 4 बड़े सुधार किए हैं।
6: इन सुधारों में पहला सुधार है कि इसमें कैप्चा, पॉपअप या ध्यान भटकाने वाली दूसरी चीजें नहीं हैं। दूसरा, यात्री सभी क्लास में सीट की उपलब्धता देख सकते हैं। तीसरा, इसमें टिकट बुक करने के लिए जरूरी स्टेप्स की संख्या कम है और वेबसाइट अब यात्रियों की जानकारी सेव कर लेगी, जिससे दोबारा बुकिंग करना आसान हो जाएगा। मौजूदा वेबसाइट के होम पेज पर भी इस नए बीटा वर्जन का लिंक उपलब्ध है। मंत्रालय ने उपयोगकर्ताओं से इसके आसान फीचर्स पर फीडबैक देने का अनुरोध किया है। IRCTC वेबसाइट पहली बार 2002 में शुरू की गई थी और अभी यह हर दिन औसतन लगभग 14.5 लाख टिकट की बुकिंग संभालती है। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा

0: चंडीगढ़ और पंजाब जाएंगे। प्रधानमंत्री हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए से लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जालंधर कैंट सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन भी करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आज से देश भर में शुरू हो रही है।

0: रांची से हमारी संवाददाता ने बताया है कि झारखंड में भी रथ यात्रा को लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं।
1: राजधानी रांची के ऐतिहासिक धुरवा स्थित जगन्नाथपुर मंदिर में सुबह से ही अनुष्ठान शुरू हो गए हैं। दोपहर में विग्रहों के रथारूढ़ होने के बाद शाम 5:01 पर महाप्रभु का रथ मौसीबाड़ी के लिए प्रस्थान करेगा। इधर हजारीबाग में इस्कॉन द्वारा IIT के विशेषज्ञों की मदद से 40 फीट ऊंचे आधुनिक तकनीक वाले रथ पर भगवान विराजमान होंगे, जहां कोलकाता की टीम विशेष सांस्कृतिक प्रस्तुति देगी। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने जगन्नाथ रथ यात्रा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। केरलम का सबरीमला मंदिर आज से मासिक पूजा के लिए खुलेगा। मंदिर में आज शाम से लेकर 21 जुलाई तक दर्शन किए जा सकेंगे। भीड़ भाड़ से बचने के लिए यह तीर्थयात्रियों को केवल वर्चुअल कतार प्रणाली के माध्यम से ही प्रवेश मिलेगा। मध्य प्रदेश से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर से संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए पहली उड़ान सेवा को कल झंडी दिखाकर रवाना किया। एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान सप्ताह में 4 दिन संचालित होगी। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए दिल्ली का लाल किला परिसर 15 अगस्त तक आम जनता के लिए बंद रहेगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने यह आदेश जारी किया है। 15 अगस्त को केवल सरकारी पास धारकों को ही लाल किला परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी। अमरीका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए हैं। आज सवेरे एक जोरदार धमाके के बाद तेहरान में वायु रक्षा प्रणालियां प्रभावी कर दी गईं। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बहरीन और कुवैत सहित इस इलाके में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमरीकी सेना ने कहा है कि उसने ईरान के लिए आर्थिक रूप से बहुत प्रमुख खार्ग द्वीप की ओर जा रहे एक खाली तेल टैंकर को रोक दिया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि उनकी अमरीका के साथ बातचीत की कोई योजना नहीं है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं दुर्गा प्रसाद।
2: अर्जेंटीना फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। दूसरे सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 2-1 से हराया। फाइनल मुकाबले में अब रविवार देर रात अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। सेमीफाइनल में पहला हाफ गोल रहित रहा। 55वें मिनट में इंग्लैंड के लिए एंथनी गॉर्डन ने पहला गोल किया। अर्जेंटीना के एंजो फर्नांडिस ने 85वें मिनट में गोल करके अपनी टीम को बराबरी दिलवा दी। 90वें मिनट में लोटारो मार्टिनेज ने गोल करके अर्जेंटीना को 2-1 से शानदार जीत दिलवाई। इससे पहले अर्जेंटीना ने 2022 में कतर में विश्व कप जीता था। और भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज शाम 5:30 से कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स में खेला जाएगा। इससे पहले भारत ने बर्मिंगम में मेजबान इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया। श्रृंखला का तीसरा मुकाबला रविवार को लंदन के लॉर्ड्स मैदान में खेला जाएगा।
0: मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और उड़ीसा के कुछ स्थानों पर आज अत्यधिक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। वहीं असम, मेघालय, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में, सिक्किम और उत्तराखंड में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है चिप और रिएक्टर के लिए खजाना खोला। नवभारत टाइम्स के अनुसार चिप का हब बनेगा भारत। सेमिकॉन के दूसरे चरण को मिली कैबिनेट की मंजूरी। जनसत्ता की सुर्खी है सेमीकंडक्टर और मोबाइल के लिए 1,90,000 करोड़ की योजनाएं मंजूर। दैनिक जागरण ने आयात घटाने की चुनौती शीर्षक से संपादकीय में दिया है केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनेक फैसलों में अधिकांश के केंद्र में देश की आर्थिक स्थिति को बल प्रदान करना रहा है। ये फैसले रेखांकित करते हैं कि सरकार निर्यात बढ़ाना चाहती है, आयात घटाना और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना चाहती है। पंजाब केसरी के अनुसार भारत ब्रिटेन में व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा किसानों और MSME को मिलेगा लाभ। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा समझौते से 99% निर्यात शुल्क मुक्त को हो जाएगा। लोकसत्ता के अनुसार यूके की विस्की, कारें और ब्यूटी प्रोडक्ट्स अब भारत में मिलेंगे सस्ते। राजस्थान पत्रिका ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का लेख देते हुए लिखा है जगन्नाथ है महाप्रभु, उनका प्रसाद महाप्रसाद। जगन्नाथपुरी में पूरे वर्ष भक्त मंदिर में आकर महाप्रभु के दर्शन करते हैं और वर्ष में एक बार महाप्रभु

0: प्रभु बाहर आते हैं। दैनिक जागरण की सुर्खी है, जीन से ग्रीन क्रांति। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को कल हरी झंडी दिखाएंगे पीएम। हेरिटेज और पर्वतीय रेल मार्गों पर चरणबद्ध रूप से चलेंगी 35 हाइड्रोजन रेलगाड़ियां। अमर उजाला का शीर्षक है, अमरीकी हमलों में 7 ईरानी सैनिकों की मौत, 300 से ज्यादा घायल। अमरीका की होर्मोज में सख्त नाकेबंदी, ईरान ने खाड़ी देशों में दागे मिसाइल और ड्रोन। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, एआई की मदद से हरियाणा में मिले 25,666 नए टीबी मरीज। टीबी मुक्त हरियाणा में 100 दिन के दौरान 4,73,000 लोगों की हुई जांच।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 एलिवेटेड सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। रेल मंत्रालय ने टिकट बुकिंग में आसानी के लिए IRCTC की नई वेबसाइट शुरू की। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज से शुरू। अमरीका ने होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए। अर्जेंटीना फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंचा, दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। फाइनल में रविवार को स्पेन से खेलेगा और भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम कार्डिफ में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी कटक शंखक्षेत्र पुरीठारे अनुष्ठित महाप्रभु श्रीजगन्नाथ विश्व प्रसिद्ध पवित्र घोष यात्रार धारा बरणी सीधा प्रसारण शुणवाई एवं आम आपचु श्रीक्षेत्र को
3: बड़ सुंदर भाव से दृष्टिपथारूढ़ जहाँ जहाँ हूँ आप संपर्क आम श्रोता मान सूचना दूसरे आज रथजात्रा कथा आलोचना करुचु से गोटे गीत मोर मन पड़ी से गीत हूँ भिकारी बल गई आम डॉक्टर नरेश चंद्र दास महोदय एक कथी उठेले जिते दुईट जगह को आम देखु गोटे हूँ रोषघर उपर छात आ गोटे हूँ ये जो आप सिंह भेट मंडप सिंहद्वार दक्षिण पार्श्वर जो मंडपटी अच्छी से नीलाद्री विजय दिन जो भेट मंडप से मंडप उपर बहु पारा सेठी उपस्थित अच्छा एवं नरेश बाबू कहते जे समग्र विश्व जिते लोक मैंने आसी देखापी आम श्रीक्षेत्र देखुले मुत बड़ देउल पारा रे से जो बड़ देउल पारा है सब बड़े बड़ देउल उड़ूले आज बड़ दांड रे दृश्य देखापी से पारा मान आप आश्चर्य हे आप देखिपार ना आम शाब्दिक मध्यम कि जानतु पारा गुड़िक श्रृंखलित होकर बस कह कथा ना मानते सत्य जमीर एकम्र कम बड़ दांड को तीन टा रथ को सी चाहक बस मेली सब बस सुंदर लगुच एक देखिले जे पारा मान भितर कि प्रकार श्रृंखला ज्ञान प्रभु भर्ती कर जोटा मान भी शिखबार अच्छी तेणु ये जो आ गोटे कथा आप देखु आपणकर कौन कह आपणकर कर्ण चक्षुरे आपण देखिबे जे आपण माने जो माने आ भीतर आसी पुरी को आपण देखिथिबे जो माने न आसी जानंतु जे एबे सिंहद्वार जो दरजा थिला बा सिंहद्वार जो कबाट थिला सिंहद्वार से सिंहद्वार कबाट उडी को वर्तमान रूपा छाउनी हे जाइचंती बहुत सुंदर देखा जाउची आमे बसी जो राधावल्लभ मठ उपरे ठीक तार सामने रे अरुण स्तंभ आगरे जो फुलरे मंडणी हेचंती सिंहद्वार सिंह दरजा बंद अछि केवल से जो जला कबाटी खोला अच्छी रूपारे छाउनी सिंहद्वार दरजा किसी समय पूर्व देखुलु जे ये जो घंटुआ सेवक मान अरुण स्तंभ पाखे समस्त समवेत होते ये 5-10 मिनिट आगु से सब मंदिर भितर को प्रवेश कले से जना पड़ी जो महाप्रभु पहंडी प्रस्तुति आरंभ होगा ना घंटुआ मैंने कहीं जाते से घंट बादन कर महाप्रभु को आणवे तेणु से घंटुआ मान मंदिर प्रवेश घटी सारा आउ आपण जानती जे महाप्रभुंकर महिमा एवं श्रीक्षेत्र महिमा ये सब संपर्क जदि आम जानवर इच्छा थाए बा से संपर्क गोटे प्रामाणिक ग्रंथ हूँ स्कंध पुराण उत्कलखंड पुरुषोत्तम महात्म्य तेणु से पुरुषोत्तम महात्म्य निजे इंद्रद्युम्न महाराजा को महाप्रभु जो प्रकार निर्देश देचंती से जो निर्देश देचंती से निर्देशटी होउची जे रथयात्रा केमिति करिवाकु हबो एवं रथजात्रा केमिति करिवाकु हबो पाखापाखी 100 रु अधिक श्लोक रथ यात्रा रो विधि विधान।

0: जय जगन्नाथ। जगतर नाथ प्रभु श्री जगन्नाथ रथयात्रा केवल एक पर्व नुहे, बरं एहा होची लक्ष लक्ष श्रद्धालुंकर आस्था विश्वास ओ भक्तिरे भरा दस दिन व्यापी एक महासमागम। एही पवित्र रथयात्रा अवसर रे भक्तमानंकर सुस्थता ओ सुरक्षा निश्चित करिबा आम समस्तंकर दायित्व। सेइथिपाई खाद्य निरापत्ता प्रति सचेतन हवा अत्यंत जरूरी। एही समय रे खाद्य निरीक्षक माने निजर कर्तव्य सक्रिय भाव रे तुलेबा समय रे आमको मध्य केते गुड़िया दिग प्रति यथेष्ट ध्यान देवाक पड़िबो, जेमितिकी तटका खाद्य खांतु एवं विशुद्ध पानीय जल व्यवहार करंतु। बाहर खोल में बिक्री होउथुबा खाद्य, कृत्रिम रंग दिया खाद्य, बासी और दुर्गंध होउथुबा खाद्य, माछी बसुथुबा खाद्य एवं पचा सड़ा फल और पनीपरिया आदौ खांतु नहीं। खाद्य खाइबा पूर्वरु एवं परे तथा शौच हवा परे निज हाथ को साबुन ने भल भाव धुअंतु। शरीर जल शुष्कतार रक्षा पाइबा आवश्यक स्थले ओआरएस द्रवण पियंतु। सर्वदा पायखाना व्यवहार करंतु एवं परिष्कार परिच्छन्न रहंतु। बळिया आवर्जना तथा बळका खाद्य एणेतेणे न पकई डस्टबिन व्यवहार करंतु। जरूरीकालीन सहायता पाई पुरी जिला मुख्य चिकित्सालय कंट्रोल रूम फोन नंबर 06752222175 रे जोगाजोग करंतु एवं आंबुलांस पाई 108 को कॉल करंतु। जय जगन्नाथ।
1: राष्ट्रीय प्रगतिर भीति नारी शक्ति विकसित भारत में समृद्ध ओडिशा पाई महिला सशक्तिकरण को केन्द्र और राज्य सरकार विशेष गुरुत्व। महिला सशक्तिकरण जुगांतकारी योजना सुभद्रा महिला मिली आर्थिक सहायता। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना एकीकृत ममता और प्रधानमंत्री मातृवंदना योजन योग्य हिताधिकारी सहायता। असुविधे महिला तुरंत सहायता पाई महिला हेल्पलाइन नंबर 181। असहाय महिला शक्ति सदन वन स्टॉप सेंटर पोषण अभियान मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना इत्यादि माध्यम गर्भवती किशोरी प्रसूति और शिशु स्वास्थ्य को दिखाई प्राधान्य। प्रारंभिक शैशव जत्न और शिक्षा आमे पढ़ा आम भाषा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान अद्युका इत्यादि जरिया महिला और शिशु सर्वांगीण उन्नति पाई सर्वदा कार्यरत महिला और शिशु विकास विभाग ओडिशा सरकार।
2: जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। श्रोता बंधु, महाप्रभु पुणी आउ थे समस्त छता को फुटे आ भितर वर्षा बंद हो जाता किंतु वर्तमान वर्षा टिके टिके टिके टिके पुणी पड़ा आरंभ किंतु सकाल वर्षा एवं ना वर्षा जदि हो मूसलधारा वर्षा तो आम कहीपर नहीं कि वर्षा हो दर्शनार्थी मैंने बड़दाण्ड में समवेत होती समस्ते वर्तमान पुणी छता फुटेक रखिंट निज मस्तक सुदर्शन महाप्रभुंर पहंडी सरी जा माँ सुभद्रा रथ उपर से आरूढ़ किसी समय पूर्व सुदर्शन संपर्क में कहते आमर डक्टर कल्याणी नंदी महोदया डक्टर हरिहर कानून महोदय ये महाप्रभु सुदर्शन संपर्क जो कहुच्छे सुदर्शन प्रकृत में इतिहास को जदि आम जीवा इतिहास को छाड़ी तो आम जगन्नाथ संस्कृति संपर्क

0: ଜିନିଷ ନିଜେ ସ୍ପ୍ରେ ହଉଛି ସେଇଠି।
1: हाँ
0: तेणु कादुआ गुंडीचा धूलिया गुंडीचा तो किसी श्रीक्षेत्र नुआ कथा नुहे तेणु ये वर्ष आम देखा कादुआ गुंडीचा है हौ आउ कादुआ
2: वर्ष है कादुआ गुंडीचा देखी
0: नए वर्ष देखिले। अच्छा कादुआ गुंडीचा जे आउ को बड़ दांड रे माटी अच्छी जे कादुआ हबो एबे तो बड़ दांड सारा आपनकर कंक्रीट हो जाय छी रथ को दौड़ी को छु छु रथ गड़ी गड़ी करी जाउचंती
2: छोटी चिता रे झलसुची
0: झोटी आउ चिता पड़ी तेणु आउ कादुआ गुंडीचा गोटे शब्द हो खाली रही तेणु कादुआ गुंडीचा प्रकृत किंतु महाप्रभु यही जगतर कल्याण जगतर जनता स्वार्थ पाई से सही जाइंट आज ये वर्षा को जे इंद्र पचे रागिले रागंतु चारि मेघ को आणिकिरी वर्षा करंतु पचे किंतु जगतवासी उपकार हो एभलिया महाप्रभु ना
2: पृथ्वी सस्यशालिनी
0: पृथ्वी हाँ काले वर्षंतु पर्जन्य पृथ्वी सस्यशालिनी देशो यंक्षोभ रहितं ब्राह्मणा असंतु निर्भया ये महाप्रभु परा जगत जनकर कल्याण पाई आसुछन्ति से तांको सुख पाई वर्षा को बंद करेंगे भूमि फाटिकिरी आं करिछि चाष होइनी तेणु कृषक मैंने उद्योग नयन में चाहते आकाश को केतले मेघ वर्षा हम बोली तेणु महाप्रभु ताक अटकेबे जगत कल्याण हे तो पूरा सी रथयात्रा को आसुछंती वर्षा को जब अटकेबे जगत कल्याण हम तेणु महाप्रभु जाणीशुणी कर वर्षा को सही होती तेणु महाप्रभु निजे जो वर्षार तिंतिकी आसवाप प्रस्तुत आम कहीं डर वर्षा हो जगत रे लोकंकर उपकार हो बोली महाप्रभु चाहिचंती बोली ए वर्षा होची एटा को आमे ए दृष्टि देखिबा को पडिबो एवं सब श्रोता को मध्ये आमे निवेदन करिवो जे श्री क्षेत्र रे वर्षा हेले हो पछे किंतु जगतर कल्याण हो बोली महाप्रभु विचार करि आछंती ए जो बड़ ठाकुर बलभद्र आछंती वर्तमान सिंहद्वार गुमुट भितरे अछंती अरुण स्तंभ पाखरे आलट चामर सब पड़ुची तेणु महाप्रभु आमे मध्ये टिके देखिबार असुविधा होची महाप्रभु कारण बड़ ठाकुर बलभद्र को हाँ एबे देखा गला सिंहद्वार गुमुट भितर टाइया हलिवार आम देखिलु बड़ ठाकुर बलभद्र वर्तमान पहंडी विजय करिबा को आछन्ते अरुण स्तंभ पाखरे पहुंची जिवे आउ पांच चारि पांच मिनिट पर एठी जो बलभद्र संपर्क आमर डॉक्टर कल्याणी नंदी कहते डॉक्टर नरेश दास कहते महिमा वर्णना करते केते रूप तांकर से शिव स्वरूप से अनंत स्वरूप रुद्र स्वरूप एमती नाना कथा कहा जाए किंतु स्कंद पुराण बड़ ठाकुर बलभद्रंकर महिमा संपर्क कौन कही दीपद आपंक कहवाक चाहती जय राम सदा राम सच्चिदानंद विग्रह अविद्यापंक रहित निर्मलाकृत ये नमः जय राम सदा राम सच्चिदानंद विग्रह आम परमात्मा सच्चिदानंद विग्रह कौ बलभद्र सच्चिदानंद विग्रह जयाखील जगत भार धारण श्रम वर्जित जगतर भार धारण करिवारे जहांकर श्रम टिके मध्य हुए नहीं श्रम टिके भी लगे ना सी क्लांत हुंति ना सी जगत को धारण करिचंती धारण जनित क्लांति ना तापत्रय विकर्षाय हलंकलयते सदा तापत्रय कौन आधि भौतिक आध्यात्मिक एवं आधि दैविक ए त्रिताप जो संसार लोक मान क्लेश विजड़ित करे संसार लोक माने दुख पाती क्लेश पाती से तीन प्रकार ताप को से कर्षण कर दियंती माटी को कर्षण करदे माटी जमी उर्वर हो जाए तेणु ये त्रिताप को बड़ ठाकुर बलभद्र महाप्रभु से कर्षण करी ए त्रिताप को विनाश करती तेणु ये त्रिताप को विनाश करुवा हेतु तामें कौन कहचु जय राम सदा राम सच्चिदानंद विग्रह अविद्यापंक रहित निर्मलाकृत ये नमः एवं आमर संसार रे समस्त दुखर कारण कौन जानते श्रोता बंधु वेदांत कहिले ये समस्त दुखर कारण होचे अविद्या अज्ञान तेणु ये अविद्या रूपक पंक को निर्मूल करिवा पाई ये पंक को बाहर कर देवा पाई महाप्रभु निर्मलाकृत ये नमः एवं निर्मल करिवा पाई जे कृत संकल्प होकर बड़ दांड को आसुचंती बड़ ठाकुर बलभद्र तांकु आमे प्रणाम करुचु मते तो डॉक्टर दास मते तो बेले बेले जगन्नाथ नाटी अपेक्षा मते बलभद्र नाटी बहुत सुंदर लगे यही सुंदर लगे जे जे जगन्नाथ कहिले तो आमे जमिति कही उपेन्द्र भंज तांकर कोटि ब्रह्मांड सुंदरी काव्यरे जे भक्ति देवा गुप्त हुई अच्छी युक्ताक्षरे अच्छी युक्ताक्षरे।

सुंदर भाव से अरुणस्तंभ निकट को भक्त माने छुट्टी जाउछंती जो माने विभिन्न बेसरे निजो को सज्जित करिछंती श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दस्य सख्य आत्मनिवेदनम से नवधा भक्तिर से सुंदर दृश्य को प्रभु निकट में समर्पित कर दौंती कालिया सांदकर विश्व प्रसिद्ध घोष यात्रा जो कालिया सांते ब्रह्मांडर ठाकुर आपटे बलभद्रंकर रथरे जो तालध्वज रथरे बलभाई बलभद्र विराजमान कर सारे माँ सुभद्रा सी विराजमान कर सारे सुदर्शन सहित संयुक्त होती से दर्प दलन रथरे वर्षार प्रकोप एवं चली वर्षार से जो इंद्रकर वृष्टि एवं चली भक्त माने अपेक्षा करते कालिया सांत आसवे जहाँ को अति सुंदर भाव अच्युतानंद हरिवंश से वर्णना कर अनंत कोटि ब्रह्मांड जार गर्भे जापाद चिंतंती जोगी ध्यान होई मग्न जहा कु करुणा करू तु ही भाव ग्राही से ही तर पद पादे पद्म पादे विलीन होई हे अनंत ब्रह्मांड कोटीर ठाकुर तुम्हें हूँ कोटि कैबल्य नाथ गतिर गति आरतीर साथी पतित पावन प्रभु कमनीय नमनीय तार प्रतीक अवय अनंत निराकार निरंजन तुम्हें हूँ से समस्त आर्त बंधु आर्तनाम सकल आर्तिनाशनम श्री जगन्नाथ मिले लीलामय पुरुषंकर लीला अटकी जाइछंती अणसर घरे थिले आज बाहर होइछंती अणसर घरे थिलो आज बाहर होइलो टिके अड़सर घरे किंतु आज कौन करे आसुच एवं जाऊ पादुंडन कर दईतापति माने आपण को नहीं आसु तथापि कहीं प्रभु आस आलंब कर ना आलंब कर ना प्रभु चली आस चली आस भक्त माने अपेक्षा करमें हूँ जगतर ठाकुर जहां मुखर ब्राह्मण बाहुर क्षत्रिय उरुर वैश्य पादर सूत्र चक्षुर दिवाकर चंद्र कर्ण दयरु प्राणादि पंच वायु जिहारु अग्नि नाभिरु आकाश मस्तकरु स्वर्ग सृष्टि तुम्हें हूँ से यज्ञ पुरुष जो यज्ञ पुरुष को देखिथिले स्कंद पुराण अनुसार सहस्र अश्वमेध यज्ञ समापन समय जेतेबेले यज्ञर पूर्वरु से यज्ञ पुरुष को स्वप्न देखिथिले एवं तापरे जेतेबेले अवभूत स्नान करिबा पई जाइछंती सागर तीर रे आपण दारु ब्रह्म स्वरूप आसीथिले जो दारु रूपे आसीबा पारे आपण को स्नान करा जाइथिला से स्नान थिला स्नान पूर्णिमा आविर्भावर दिवस आज से अड़सर घरे रही आपणकर दार व्यतनु सुंदर भाव रे चर्चा हो सारे आज आसी अड़सर घर बाहर हो भक्त मान पाखकु तुम्हें यज्ञ यज्ञास तुम यज्ञेश परात्पर शब्द ब्रह्म परम तुम ही शब्द ब्रह्मासी विश्वरा स्वरार सम्राट जगन्नाथ वीरारसी जगतपते अधश्च उद्धर्च तिर्जक त्वं तोया व्याप्तम जगन्मय आपण सारा जगत को पूरा व्याप्त कर रखिंट आपण हूँ विश्वर ठाकुर आपण हूँ कोटि कैबल्य नाथ जगतर नाथ जहाँ जो जगत भितर सारा संसार को आपण नहीं जाइंट कोड़े महिमा मंडित आपणकर त्रिभुवन विदित हूँ आपणकर नाम आपण जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ पाही माम जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ रक्ष माम से जगन्नाथ को रक्षा कर बोली मणिमा मणिमा डाकरे खुरी पड़ुची आज बड़ दांड रे आपण चली आसी किंतु आमे तो जानिथिलु प्रभु आपणकर पर कोनो पाद नाही आपणकर पर कान नाही आपणकर पर हाथ नाही किए कहे सारा संसार कहुतला किंतु आपण तो आज विस्तारित करिसंती आपणकर शरीर को आपणकर बापू को अपाणी पाद जवन ग्रहिता पश्यत चक्षु ससुरुणत्य कर्णः सवेति वेद्यम नचे तस्याति वेता तमाहुराज्ञम पुरुषम महांतम हस्तपाद होई आपण जो कहुथिले नाही बोली आज किंतु आपण सवार विश्व को आपण देखै दोचंती मोर पाद अछि देख मु चली चली आसुची बाउन भंडार मालिक मु साठिए पौठी भोग नीति मो पाखरे अर्पण करा जाए मु जेते दउथिले सेते खाउथिबि नसुखिबो मोर हात मु ते जेते दउथिबो मु सेते खाउथिबि एक

0: कालिया कान्हू कालिया कान्हू आउ विलंब कर काहीं कि गुमुटारे रही कल कि कालिया कान्हू आउ विलंब कर काहीं कि बरस कथरे विजय रथरे बरस के थरे विजय रथरे पतित तारीबा पाई के कालिया कान्हू आउ विलंब कर काहीं कि कालिया कान्हू आउ विलंब कर
1: काहीं कि नहीं आज प्रभु टाहिया मस्तक ओलारी हो जाती काहीकि कहीं आज प्रभु कि मान मारी जे मान उदाहरण कड़ हुए तारण से प्रभु काहीकि आज आपणकर एभली रूप काहीकि प्रभु देख आपणकर सही रूप जो रूप देखापी ये भक्त मैंने आसी आपणकर रूप लावण्यर जो पटातर ना चका चका आखि
0: मत से ही रूप देखा हरी मत से ही रूप देखा हरी जय श्री राधे बोली डाके बांसुरी मत से ही रूप देखा हरी मते से ही रूप देखा हरी सिंहद्वार ठारू वर्तमान बड़दाण्ड जेते दूर पर्यंत आम आखि पाऊची आम देखा पाऊ समस्ते शत्रुष्ण नयन चाहती वर्तमान समस्त धैर्यर बंध मध्य धीरे धीरे धीरे धीरे भांगिबाकु जाऊची हे महाप्रभु आपण जदि परीक्षा नेबे आपण जदि परीक्षक हेबे आपणक पाखरे के परीक्षा दब प्रभु तेणु ये भक्त मानू आउ कष्ट दियंतु नाही आपण पूरा कहिसंति रथे तु बामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते रथ उपरे बामन रूपी मोते दर्शन कले आउ पुनर्जन्म हब नाही यही आशा टिकक भरोसा टिकक नहींकरी कौ गाँ गंडा कौ सहर बजार कौठू कौठू लोक सबू आसी आपणकर भक्त कौ कोण अनुकोण थिले समस्ते आसी आपण को टिके आखि पूरे रथ उपर दर्शन करिवे किंतु रथ सेमती उन्मुक्त अच्छी रथ चाहिकरि बसीचि प्रभु आपण समस्तंकर गोटे कथा प्रभु आउ अभिमान करंतु नाही प्रभु आउ अभिमान करंतु नाही आउ आपण अभिमान करिवे आउ किसी समय गले माँ अभिमान करिवे आउ कौन ये समस्त अभिमान के भांगिब तेणु आम मात्र आपणकर अनुगत आपण आपण जहाँ करिवे से आमर सम्मति जदि आपण चाहूंती ना आउ किसी समय अपेक्षा कर समस्ते अपेक्षा करिवे किंतु प्रभु आउ समस्त अपेक्षा करिवा को नदे वर्तमान मु देखिबा को पाउची जे समस्ते बोधे चिंताग्रस्त हो पड़े कारण कहारी मनरे आउ सराग नाही काहीकि महाप्रभु अभिमान कले एवं काहीकि गुमुट भितर रहीगले पतित पावन पाखे रहीगले पतित पावन कौन ताकु कौन किसी कहले कि पतित पावन किसी कहते कि तुम्हें देख मो प्रति कौन अन्याय होउची कि कौन दीजन भितर कथबार्ता चली तेणु वर्तमान जना पड़ू महाप्रभु आगे आसुले आम जाचु एपर्यंत जिते रही इतिहास बा किंवदंती महाप्रभु रथ को आसिकी रथ को अटकाती महाप्रभु रथ पार्श्वर चारमा को उठाती नहीं जहाँ सांतनु सार कहले उन्नीस बास्तरी मसीह महाप्रभु चारमा को उठिले नहीं जिते चेष्टा कले के दौड़ी छिंडीगला बर प्रभु जमा उठिले ना से तीन रथर सेवक मैंने एकाठी हेले एवं तीन रथर सेवक मैंने एकाठी होकरी समस्ते चेष्टा कले प्रभु उठिले ना परिशेष गजपति महाराजा पाख को खबर गला गजपति महाराजा आसिले एवं गजपति महाराजा केवल रथ जात्रा रे थरे मात्र आसंती चेरा पहरा करिबा पई किंतु से वर्ष जत्ते राजगुरु माने माने ताको बारण कले कहले ना तमे थरे मात्र जीव किंतु पुणी वर्तमान आमे देखिलु आउरी नैराश्य कहीं से जो धवल छत्र टेका से पुणी तले थुआ होगला तेणु आम मान हृदय जो टिके आशार अंकुर उद्गम होता वर्तमान ता पुणी मरीगला एवं आम पुणी अपेक्षा करूचु कहीं प्रभु गोमुट भितर बाहर को बाहर ना कौन
1: श्रोता बंधु जे सिंहद्वार गुमुट भितर कला सांत आसुछंती सत किंतु काहे मन मारिछंती मस्तकरे नाही से राघव दास प्रदत्त टाहिया
0: जे टाहिया गला
1: कुआडे सबळो चली जायछि
0: जे टाहिया नेला किए
1: प्रभुकर प्रसाद को आजि बांटी नैछंती बहुत हुए सेहिति पई कला सांत आजि आसुछंती जे 14 ब्रह्मांडर ठाकुर जे चारि अर्थ जे प्रदान करुछंती चतुर्वर्ग प्रदान करुछंती से कालिया शांत जे पंचकोशी जाए जरे देखे जाए दर्शने कलमस हुई चुना चौदह ब्रह्मांड करतंग लीला शंखनाभि क्षेत्र विचित्र सिना ये शंखनाभि क्षेत्र में कालिया शांत कर जो विचित्र लीला लगी भक्त ये बड़दाण्ड में ठिया हो डाकुछंती आस प्रभु आस बड़दाण्ड रे बुली धारी हाथ रे झोली केते आतुर डाके तो तेरे जगन्नाथ जगन्नाथ रे जगन्नाथ जगन्नाथ धारी सरधा जगन्नाथ बड़दाण्डरे मु बाहु प्रसारी डाकुची प्रभु आस आउ विलम्ब कर नाही लक्ष लक्ष जनता आजि

नंद नंदन कृष्ण चंद्र से संकेत को से दर्शन को आम कटी प्रदेश रे श्री मदन मोहन पाइबा तेणु ये कहवा को गले जमी स्तुति करा जाई गीत गोविंद रे नवनीरज धर श्यामल सुंदर चंद्र कुसुम रुचि बेश गोपी गण हृदय तेणु से गोपीगण हृदय ईश महाप्रभु नंद नंदन मिलित विग्रह जी मदन मोहन सी आसवे वर्तमान विजय करिवे महाप्रभु जगन्नाथ नंदीघोष रथरे रामकृष्ण आसवे चलती विग्रह सिंगारी सेवायत माने पहंडी करी आनंती बा हातरे धरी सेमाने आसंती पटुआर सहित विजय करांती आउ रामकृष्ण तालध्वज रथरे उपवेशन करिवे इति अवसर रे जो परिवेश सृष्टि हेछि आरक्षी बाहिनी माने जेहेतु गजपति आउ अल्प समय परे छेरा पहरा पाई आसिबे सेतिपाई सेमाने तीनोटी कड़न वर्तमान करि सारिलेनी जो रही साधारण भक्त माने बड़दांडरे सेमानंक पाखरे गोटिए कड़न तो सकाळ समय रु थिला द्वितीय कड़न टी वर्तमान प्रस्तुत होईछि आउ गोटिए रथ पाखरे गोटिए कड़न एई जो बलय तयारी होईछि केवल श्रृंखला पाई सेई महाप्रभुंकर दिव्य उत्सवर श्रृंखलित भावरे होई पारिले समस्त तार आनंद नेबे धन्य जगन्नाथ धन्य तुम भक्त ए कथा को समस्ते आस्वादन करि पारिबे सेथिपाई वर्तमान उद्यम चली जो माने बाहर श्रद्धालु सब थिले भितरे नृत्यांगना माने बा जो मानकर कार्य किछि नाही आउ से मानंकु बाहर को द्वितीय कड़न को अणा जाउछि आउ जेहेतु जगतगुरु शंकराचार्य आगमन हेबो वास्तवरे गुरु हेउछंती ए जगतर पथ प्रदर्शक जेतेबेले गुरु शब्द को नहीं विभिन्न प्रकार समस्या भितरे टिके आसीगला द्वंद्व सही समय रे तंत्रर जे हेउछंती साधक प्रचंड साधक ठाकुर निगमानंद से कहिले जे मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः तेणु जगन्नाथ हेउछंती मोर गुरु आउ से हेउछंती जगतर नाथ मोर नाथ जगतर नाथ मोर गुरु से जगतर गुरु से जगत गुरु जगन्नाथ को मु कोटि प्रणाम जनाउछि समाधान होइगला जे गुरु कहिले कौन शब्द गुरु एक व्यक्ति नुहंती गुरु गुरु हेउछंती गोटे संविधान जे आग को नहीं जानती कोटि कोटि शिष्य को हात धरी मार्गदर्शन करांती खराप को भल करती अज्ञान को आलोक दियंती निर्धन को धन कराई धनवान कराई दियंती जश ऐश्वर्य प्रदान करती चतुर्वर्ग प्रदान करिवार मार्गदर्शन करांती से हेउछंती गुरु तेणु गुरु शब्द रे ये जगद्गुरुंकर जो आगमन हेब चारि भारत बर्षर चारिधाम चारोटी पीठ आमे जानिचे आम सनातन परंपरा रे चारोटी पीठ आमर रही तन्मध्यरु बद्रीनाथ केदारनाथ बद्रीनाथ द्वारिकानाथ रामनाथ आउ जगन्नाथ ये चारिधाम तन्मध्यरु आमर श्रीक्षेत्र रे पुरीनाथ बा जगन्नाथंक धाम रे जो आश्रमटी पीठटी आदिगुरु प्रतिष्ठा करिथिले से होउछंती भोग गोवर्धन बा भोगवर्धन पीठ दुई प्रकार रहिछि अनेक गोमाता मानंकर एही आश्रम रे संरक्षण हेउथिला सेतिपाई गोवर्धन मठ आउ भोगवर्धन आपण माने जानंती श्रीमंदिर रे जेतेबेले निर्दिष्ट 60 पौटी कोठ भोग जात भोग छपन भोग एही जो भोगर व्यवस्था निर्दिष्ट भावरे नथिला सेही समय रे जेतेबेले मोगल शासक माने आसी
आम।

0: 들어.
1: 박바인 모습으로 들이가다르네요.
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रथयात्रा अवसर देश विदेश में रहता श्री जगन्नाथ भक्त को शुभेच्छा जनाई राष्ट्रपति कहते भक्त और भगवान मिलन पर्व विश्व विरल पर्व में महाप्रभु श्रीजगन्नाथ बड़ भाई बलभद्र भगिनी सुभद्रा और चक्रराज सुदर्शन सहित रथारूढ़ भक्त सहित मिलित हे अवसर में राष्ट्रपति भगवान निकट में देशवासी सुख समृद्धि कामना कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शुभेच्छा जनाई भारत कालजयी आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक ऐतिह्यर एक अनन्य अभिव्यक्ति रथयात्रा सह जड़ित परंपरा भारत एवं विश्वर अनेक पीढ़ी को प्रेरणा दी विनम्रता सामूहिक अंशग्रहण और निस्वार्थपर सेवा को प्रतिफलित करे बोली प्रधानमंत्री कहते राज्यपाल हरिबाबू कम्भम पाटी रथयात्रा अवसर शुभेच्छा जनाई समस्त आस्था एकता समानता भाईचारा और मानवतार महान भावना को आहरी सुदृढ़ करे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी पवित्र घोषयात्रा उपलक्ष्य शुभेच्छा जनाई महाप्रभु श्रीजगन्नाथ होती विश्व भ्रातृत्व समानतार प्रतीक आशीर्वाद राज्यर विकास सहित समस्त जीवन सुख शांति और समृद्धि परिउठु। आपण माने आंचलिक संवाद सुनछन्ती आकाशवाणी कटक केन्द्ररो। सुवर्णपुर जिल्लार पाताली श्रीक्षेत्रठारे पवित्र घोषयात्रा अनुष्ठित होउछि। त्रिकुट पर्वतर छलिया शिखररु चतुर्थमूर्ति धाड़ी पहंडीरे अणाजाइ रथारूढ़ कराजाइछि। नीति निर्खंड अनुजाई तीन ठाकुरंकर द्वार फिटा मंगल आळती सकाळ धूप नैवेद्य सह बेश ओ टाहिया लागि परे पहंडी आरंभ होइथिला। सेवायतमाने 108 पाहाच अतिक्रम करि श्रीजीवमानंकु पहंडीरे आनिथिले। नवरंगपुर जिल्ला रायघरे नूतन रथ प्रतिष्ठा उत्सव अनुष्ठित होइछि। विद्यालय शिक्षामंत्री नित्यानंद गंड रथ प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सामिल हुए। गृह निर्माण और नगर उन्नयन मंत्री डॉ कृष्णचंद्र महापात्र गतकाली विलंबित राति पुरी सहर विभिन्न जलबंदी प्रवण अंचल बुली समीक्षा करिछन्ते। मंत्री कहते रथयात्रा देश विदेश आसुवा श्रद्धालुमाने जेपरि जलबंदी किंबा वर्षा जो कौनसी असुविधार सम्मुखीन न होंती ताहा सरकारंकर प्राथमिकता। रथयात्रा रे लक्षाधिक श्रद्धालुंक सुगम सुरक्षित और व्यवस्थित रहणी को सुनिश्चित करिबा एवं तुरंत समाधान पई मंत्री निर्देश देइछन्ते। विभिन्न संवेदनशील स्थान परिदर्शन श्री महापात्र उच्च क्षमता संपन्न पंपिंग सिस्टम जरिया युद्धकालीन भित्तिरे जमी रही जल निष्कासन प्रक्रिया को गुरुत्व देवा को अधिकारी मानको निर्देश देछन्ते। रथयात्रा परे पुरी रे ड्रेनेज व्यवस्था स्थायी समाधान करा जिवो बोली श्री महापात्र कहिछन्ते। पेट्रोल डीजल एवं विमान टर्बाइन ईंधन एटीएफ रप्तानी उपरे लागू स्वतंत्र अतिरिक्त उत्पाद शुल्क सरकार संशोधन करिछन्ते। डीजल रप्तानी उपरे शुल्क लिटर पिछा 15.50 को एवं एटीएफ रप्तानी उपरे प्रति लिटर 14.50 को वृद्धि करा जाइछि। अन्य पक्षरे पेट्रोल रप्तानी उपरे शुल्क लिटर पिछा 2.50 को ह्रास करा जाइछि। अर्थ मंत्रालय पक्षरु ए संक्रांत विज्ञप्ति जारी हेबा सह एहा आजिठारु कार्यकारी होइछि। कनिका प्रजा आंदोलनर कर्णधार तथा महान विप्लवी चक्रधर बेहरांक राज्यस्तरीय जयंती अवसर में भुवनेश्वरस्थित राजभवन छक श्रद्धांजलि अर्पण कार्यक्रम अनुष्ठित होइजैछि। गांधीवादी आदर्श अनुप्राणित हो से प्रजा अधिकार स्वाभिमान और न्याय आजीवन संग्राम करिथिले। त्याग साहस और देशप्रेम आज आगामी पीढ़ी प्रेरणार उत्स हो रही अन्याय अनीति और शोषण विरुद्ध लड़ाई ओडिशार स्वाधीनता संग्राम और कृषक आंदोलन इतिहास एक स्वर्णिम अध्याय हो रही। राज्य सरकार मृत्तिका संरक्षण और जल विभाजिका विकास निर्देशक सुब्रत कुमार पंडा दुईदिनिया नुआपड़ा जिला गस्तरे जाइछन्ते। मृत्तिका संरक्षण और जल विभाजिका विकास विभाग पक्ष जिल्लारे कार्यकारी होउथिबा विभिन्न प्रकल्पर अग्रगति कार्यर गुणवत्ता और समयबद्ध कार्यान्वयन संपर्क में श्री पंडा समीक्षा करिथिले। जल विभाजिका सम्मेलनी कक्षे आयोजित समीक्षा बैठक में प्रकल्प निर्देशक संतोष कुमार रथ जिल्लापाल मधुसूदन दास प्रमुख उपस्थित थिले। पानीपाको ओडिशा पश्चिमबंग उपकूल पाखापाखि उत्तर पश्चिम बंगोपसगर एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होइछि। एहार प्रभाव में पुरी समेत राज्यर विभिन्न स्थान में वर्षा जारी रहिछि। भुवनेश्वर पानीपाक विज्ञान केन्द्र सूचना अनुसार आसंता 24 घंटा मध्य 20 जिले में बिजुली खड़खड़ी सह प्रबल वर्षा होबार संभावना रही सतर्क सूचना जारी करा जाइछि। गत 24 घंटा मध्य कटक जिला बांकी सर्वाधिक 210 अनुगुल 206 तालचेर 195 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड करा जाइछि। मुख्य संवाद पुणि थरे ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶରେ ପୁରୀରେ ଚାଲିଛି।

0: जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। वर्तमान आम सप्तावरण मूर्ति तीन रथ में विराजमान कर सारे चारि विग्रह एवं अर्चा विग्रह विजय प्रतिमा भाव में मदन मोहन रामकृष्ण विराजमान कर सारे वर्तमान आमर आउ अल्प समय पर आमर जी हूं ठाकुर राजा जी हूँ आद्य सेवक वीरश्री गजपति गौड़ेश्वर नवकोटी कर्णाट कलबर्गेश्वर विराधि वीरवर श्री श्री दिव्य संघदेव महाराज आसबे तामजान आसबे छेरा पहरा भली एक पवित्र कर्म करिवे। वर्तमान आम सांगे जन श्रद्धा जोड़ी होती आसतु तांगे आलोचना करने परिचय जानवा एवं आज रथयात्रा को देख तर कौन अनुभव आसमें जानवा कहतु आज्ञा
1: मुसिता शतपथी वासी रोची अहमदाबाद रे बहुत दिन मन थिला कि रथ यात्रा दर्शन करने वर्ष कालियार डोरी मत लगला ये आसी दर्शन करने एते वर्षा एतर हेले भी एते अत्याधिक लोक एठी बसी देखिवार जो सुजोग पाई सेठी निजकु बहुत भाग्यवान मन करुची कालियार से जगतर नाथ जगन्नाथ देखिदेले आखिर धरझर लुह बाहरी पड़े भाव विहल हो जाऊ आम तार दौड़ लगवा जो एत दूर आसी आज रथ जात्रार जोगरे देचु सब निजकु बहुत भाग्यवान मन कर
0: जाओ भल कथ कहले आज आप जो अनुभव करसा घर गोड़ काढ़ी होनी दांड गले आंठिए पा बर्तमान इंद्र देवता आमर भगवान जगन्नाथ को देखिकी आहरी वृष्टिपात कर प्रतिकूल पाग भितर श्रद्धा भक्त मान भितर जो आग्रह उत्साह उद्दीपना आप तो बड़दाण्ड रु शुणी पार आपण आउ कौन अनुभूति आसूसी आप तो कालियार डोरी लगला ब्रह्मपुर सुदूर धाई आस पुरी श्रीक्षेत्र को आउ आपण को भीतर कोन अनुभव
1: प्रकार ए प्रकार प्रतिकूल परिस्थिति रे केही भी घर बाहर भल लगे कि लगिया को इच्छा भी हबनी किंतु कालिया को देखिया पे मन कर कि नाही आमे जीवा कालिया को दर्शन करिया आमको किछि भी लागुनी वर्षा किछि भी लागुनी जे इन चली छी वर्षा चली छी सेमिति वर्षा रे ओदा है दर्शन करिया पे जो जो आग्रह जो लागु छी मन रु सेडा आज्ञा कहि हबनी एथिरे जणई परिवानी आमे एते तेणुक जगत तारनाथ लीला किसी आम को जाना ना से जहा जहा डाके डोरी लगे कि टाणी टाणी नहीं आस
0: कालिया ठाकुर डोरी जहाँ को लगे सी आपे आपे टाणी जाए कारण चुंबक जो भाई लुहा को टाणे एते तार आकर्षण शक्ति रही गोटे माध्याकर्षण शक्ति रही कालिया को देखीदे कालियार स्पर्श को अनुभव करदे आम भितर आपे आपे जाग्रत हो जाए कारण से होती पूर्ण ब्रह्म ब्रह्मस्वरूप जिते महाप्रभु ब्रह्मस्वरूप भक्त को दर्शन दिखती ना भक्तर मन जाणी सब सब कम से कर दिखती ये विश्वास कथा अनुभवर कथा जो मान भितर अनुभव रही बर्तमान जगतगुरु शंकराचार्य जो चारि दिगरे चारि धाम करी से वर्तमान यही बयस आग्रह केते उत्कंठा यही कथा को आगे नापाई मु वर्तमान प्रथम केन्द्र को जाऊँ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ
2: जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। वर्तमान बड़ ठाकुर बलभद्रंकर तालध्वज रथरे जगतगुरु स्वामी निश्चलानंद सरस्वती पूरी गोवर्धन पीठर अधीश्वर से वर्तमान रथ उपरे महाप्रभु को दर्शन करुचंदी। ये गोटे प्रतिष्ठित परंपरा परंपरा एथिपाई जे जेतेबेले आदिशंकर श्रीक्षेत्र को आसिले अष्टम शताब्दी रे एवं जेतेबेले एठी धाम प्रतिष्ठा कले एवं चतुर्धाम भितर गोटे धाम भाव रे श्रीक्षेत्र को घोषणा कले सेई दिन ठारु एठी शंकराचार्य पदवी प्रतिष्ठित हला एवं तांकर प्रथम शिष्य पद्मपाद सीए ये प्रथम शंकराचार्य भाव प्रतिष्ठित कले आपण मैंने समस्ते जानते जे जगतगुरु शंकराचार्य को आम कहीं जगतगुरु बोली कहूँ जगतगुरु शंकराचार्य आमर भारतीय धर्म दर्शन ये सब क्षेत्र में भारतीय सनातन परंपरा रे इटा कौन तांकर भूमिका।

0: ଶୁଣୁଥିଲେ ବସନ୍ତ ପାତ୍ରଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ଏହି ଭଜନଟି।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आपने एक बात ऑब्जर्व करी होगी, हमारी मन की बातों ने स्वच्छता अभियान को समय समय पर गति दी है और इसी तरह से स्वच्छता के लिए किए जा रहे प्रयासों ने भी मन की बात को हमेशा ही प्रेरणा दी है। ऐसा नहीं है कि हमने स्वच्छता में आदर्श स्थिति हासिल कर ली है, लेकिन जिस प्रकार से ODF से लेकर सार्वजनिक स्थलों तक स्वच्छता अभियान में सफलता मिली है, वो 130 करोड़ देशवासियों के संकल्प की ताकत है। लेकिन हम इतने पर रुकने वाले नहीं हैं। यह आंदोलन अब स्वच्छता से सुंदरता की ओर बढ़ चला है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं मीडिया में श्रीमान योगेश सैनी और उनकी टीम की कहानी देख रहा था। योगेश सैनी इंजीनियर है और अमेरिका में अपनी नौकरी छोड़कर माँ भारती की सेवा के लिए वापिस आए है। उन्होंने कुछ समय पहले दिल्ली को स्वच्छ ही नहीं बल्कि सुंदर बनाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने अपनी टीम के साथ लोधी गार्डन के कूड़ेदानों से शुरुआत की, स्ट्रीट आर्ट के माध्यम से दिल्ली के कई इलाकों को खूबसूरत पेंटिंग से सजाने संवारने का काम किया। ओवरब्रिज और स्कूल की दीवारों से लेकर झुग्गी झोंपड़ियों तक उन्होंने अपने हुनर को उकेरना शुरू किया तो लोगों का साथ भी मिलता चला गया और एक प्रकार से ये सिलसिला चल पड़ा। रंग और रेखाओं में कोई आवाज भले ही न होती हो, लेकिन इनसे बनी तस्वीरों से जो इंद्रधनुष बनते हैं उनका संदेश हजारों शब्दों से भी कहीं ज्यादा प्रभावकारी सिद्ध होता है। और स्वच्छता अभियान की खूबसूरती में भी ये बात हम अनुभव करते हैं।
0: श्रोता मनी कार्यक्रम सुनुचंते आकाशवाणी कटक केन्द्र रो सुनंतो। ଆଜି ପ୍ରଚାରିତ ହେବାକୁ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା। ତୁଳସୀଦାସ ବିରଚିତ ଶ୍ରୀ ରାମଚରିତ ମାନସର 80ତମ ଭାଗ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:10 ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ର ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30। ଏଥିରେ ଆଜି ରହିଛି ଆକାଶବାଣୀ ବରହମପୁର କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ରାତି 7:02 ଓଡ଼ିଆ କଥାଚିତ୍ର ଗୀତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଜିଲ୍ଲା ହାଲଚାଲରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ହାଲଚାଲ ରାତି 7:25। କୃଷି ସଂସାର ରାତି 7:30। ଏଥିରେ ବିଷୟ ରହିଛି ଖରିଫ ଧାନ ଫସଲରେ ଜୈବିକ ଉପାୟରେ ରୋଗପୋକ ଦମନ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ତାପସ ରଞ୍ଜନ ସାହୁ। ରାତି 8:02 ହିନ୍ଦୀ କଥାଚିତ୍ର ଗୀତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ରେଡିଓ ବିବରଣୀ ଶୁଣିବେ ରଥଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ ରାତି 8:15। ରାତି 8:30 ଓଡ଼ିଶୀ ଗୀତ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ନୀଳିମ ପଣ୍ଡା। ରାତି 10:00 ପ୍ରଚାର କରିବ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପବିତ୍ର ଘୋଷଯାତ୍ରା ଉପଲକ୍ଷେ ଶ୍ରୀ ଗୀତିନାଟ୍ୟର ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବ। ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ରଚନା ଏବଂ ପ୍ରଯୋଜନା ଶାରଦା ପ୍ରସାଦ ନାୟକ, ସଙ୍ଗୀତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମିଶ୍ର। ଏଥିଲା ଆମର ଆଜି ପ୍ରଚାରିତ ହେବାକୁ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା। ଏଥର ଶୁଣନ୍ତୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରଚାରିତ ହେବାକୁ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ କେତୋଟି। ଭକ୍ତିଗୀତର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦନା 6:05। ଅନୁଚିନ୍ତା 6:35 ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି ନରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର 98ତମ ଭାଗ 6:40। ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ 7:10। ଏଥିରେ ବିଷୟ ରହିଛି କଲୋନୀରେ ପ୍ରଦାହ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା। ପ୍ରଭାତ ପରିକ୍ରମା 7:25। କଥିକ 7:35 ବିଷୟ ରହିଛି ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ଜଗନ୍ନାଥ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବେ ଡକ୍ଟର ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ସାମଲ। ଅଞ୍ଜଳି 7:40 କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଧାନ, ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରସନ୍ନଜିତ ସିଂ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମାଧୁରୀ 8:30।

अपने दोनों शिष्यों श्री राम लक्ष्मण तथा अन्य मुनियों के साथ मुनिवर विश्वामित्र जनकपुर पधारे हैं। ये समाचार पाकर मिथिलेश जनक अपने श्रेष्ठ आत्मियों के साथ उनके दर्शनों के लिए आए। मुनिवर के चरणों में शीश रखकर राजा ने आशीष पाया। उसी समय श्रीराम और लक्ष्मण जो फुलवाड़ी देखने गए थे वहां आ पहुंचे। सुकुमार, किशोरावस्था तथा श्याम और गौर वर्ण वाले कुमारों का चित्त चुराने वाला रूप देख तथा उनके तेज से प्रभावित होकर सभी उठकर खड़े हो गए। श्रीराम की मधुर मनोहर मूरत देख विदेह जनक को अपनी तनमन की सुदबुद्ध न रही। उन्होंने उन दो किशोरों का परिचय पूछा जिन्हें तब तक मुनि विश्वामित्र ने बड़े स्नेह के साथ अपने पास बिठा लिया था। मुनिवर ने राजा जनक की जिज्ञासा शांत की। वे दोनों रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं जिन्हें ऋषि मुनियों के जप तप को निर्विघ्न करने के लिए महाराज ने उनके साथ भेजा है। दोनों भाई रूप शील और बल के परम धाम हैं। महाराज जनक दोनों राजकुमारों को देखकर जैसे आघाते नहीं।

0: यारों हमारे सीमावर्ती और कठिन क्षेत्रों में एयरफील्ड्स भी बनाता है, यानी टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी बदल जाए, हम चाहे जमीन से आकाश तक और आकाश से समुद्र तक कितनी भी प्रोग्रेस कर लें, पोर्ट्स, एयरफील्ड्स, रोड्स और टनल्स, इनकी भूमिका कतई कम नहीं होने वाली है। वारफेयर का स्वरूप जितना भी बदल जाए, इस बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व यह हमेशा बना ही रहेगा और इसका सीधा अर्थ यह है कि वीआरओ के कामों का रिलेवेंस भी आने वाले युग में लंबे समय तक बना रहने वाला है।
1: सर्वोच्च न्यायालय अद्य केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद पाठ्यक्रमांतर्गत नवम कक्षायां तृतीय भाषाया समावेशं प्रति महतीं चिंतां प्रकटितवान्। न्यायालयेन सप्रश्रयम् अवलोकितं यत् एतेन नवमश्रेण्याः कोमलमति छात्रेषु मानसिक भारः नितरां वर्धिष्यते। न्यायालयेन श्लाघनीयो परामर्शः दत्तः यत् इयं भाषा पञ्चमकक्षायां षष्ठमकक्षायां वा प्रवर्धनीया, येन छात्राः सुलभतया तां ग्रहीतुं समर्थाः स्युः। न्यायाधीशयोः वी बी नागरत्नायाः आर महादेवनस्य खण्डपीठेन केन्द्रप्रशासनं प्रति मौखिकरूपेण आदिष्टं यत् नवमकक्षायां तृतीयभाषायाः नवीनः भारः छात्रेषु न आरोपणीयः। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ news on air चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। ओडिशा राज्यस्य पवित्रायां पुरी नगर्याम् अद्य उत्कृष्टाध्यात्मिकोत्साहः वरिवर्ति। विश्वप्रसिद्धा भगवतः जगन्नाथस्य रथयात्रा अद्य धार्मिक विधि विधानैः अभूतपूर्व सुरक्षा प्रबन्धैः च सह महता आध्यात्मिकोत्साहेन समनुष्ठीयते। प्रातःकालादेव तीर्थनगर्याम् निरन्तरं जायमानां वृष्टिमतीत्य लक्षाधिकाः श्रद्धालवः अविचलित श्रद्धया मुख्यमार्गे एतत् पवित्रं दृश्यं साक्षात्कर्तुम् उपस्थिताः। जय जगन्नाथ इत्याख्यैः गगनभेदी जयघोषैः सह भगवान् जगन्नाथः, भगवान् बलभद्रः, देवी सुभद्रा, भगवान् सुदर्शनश्च पूर्णविध्यनुसारं स्वस्वरथेषु विराजिताः। अनेनैव सह पारम्परिकः पहाण्डी बिजे इत्ययं कार्यक्रमः सम्पन्नः। अस्य विश्वप्रसिद्धमहोत्सवस्य सुचारु सुरक्षित सञ्चालनाय सार्वत्रिकी सुरक्षाव्यवस्था, जनसम्मर्द प्रबन्धनं सहैव आपात्कालीन सज्जाः पूर्णरूपेण विहिताः। ओडिशाराज्यस्य पुरीनगरे अद्य भगवतः जगन्नाथस्य पावनी रथयात्रा समाचर्यते। अस्मिन् पुण्यावसरे राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः, उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन्, प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी च देशवासिभ्यः हार्दान् शुभाशयान् प्रकटितवन्तः। देहली उच्चन्यायालयः अद्य मानव जीवनम् अत्यन्तम् अमूल्यं वर्तते इति तथ्यं सविशेषं प्रतिपाद्य सामाजिक कार्यकर्तुः सोनम वांगचुकस्य स्वास्थ्यस्य प्रतिदिनं सूक्ष्मनिरीक्षणं विधातुं सम्बद्ध अधिकारिणः समादिशत्। श्रीवांगचुकः सम्प्रति नवदेहल्याः जन्तर्मन्तर् प्रांगणे अनिश्चित कालं यावत् अनशने निरतो वर्तते। मुख्य न्यायाधीशस्य डीके उपाध्यायस्य अथ न्यायाधीशस्य तेजस कारिया इत्यस्य खण्डपीठाभ्यां दृढं व्याहृतं यत् प्रशासनीय चिकित्सकैः श्रीवांगचुकस्य स्वास्थ्य स्थितेः नियमितरूपेण परीक्षणं करणीयम्। केन्द्रप्रशासनस्य देहली प्रशासनस्य च पक्षतः उपस्थापितः महाधिवक्ता तुषार मेहता न्यायपीठस्य पुरतः न्यवेदयत् यत् प्रत्येकस्य नागरिकस्य जीवनं देशाय बहुमूल्यं वर्तते, अतः वांगचुकस्य नियमित चिकित्सकीय परीक्षणे प्रशासनस्य कापि विप्रतिपत्तिः नास्ति, अपितु पूर्ण सहमतिः अस्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी श्वः हरियाणा चण्डीगढ़ पंजाब स्थलानां प्रवासाय निर्गमिष्यति। अत्रावसरे प्रधानमन्त्री हरियाणायाः जिन्द रेलस्थानके जिन्द सोनीपत क्षेत्रयोः भारतस्य प्रथमाय हाइड्रोजन संचालित रेलयानाय हरित पताकां प्रदर्शयिता। अनेनैव सह श्रीमोदी जिन्दनगरस्थे एकलव्य क्रीडांगणे सप्तशता

अधिक चतुर्दश सहस्र कोटि रूप्यकाणां विभिन्नानां विकासात्मक परियोजनानां आधारशिलां स्थापयिष्यति। द्विवारं ओलंपिक पदक विजेत्री भारतस्य कीर्तिमयी क्रीडिका पीवी सिंधुः अद्य स्वकीयं एकं सर्वोत्कृष्टं प्रदर्शनं विहितवती। चीनदेशीयां क्रीडिकां हान युए इत्येतां पराजित्य जापान ओपन सुपर 750 बैडमिंटन प्रतियोगितायाः प्रागुपान्त्य चरणे ससंभ्रमं प्रविष्टा। भारत इंग्लैंड देशयोर्मध्ये द्वितीया एक दिवसीय स्पर्धा अद्य सांप्रतं कार्डिफ नगरे जायमाना वर्तते। इति वार्ताः।

आकाशवाणी कटक आरंभ करुछु कार्यक्रम विकास मंत्र प्रयोजना सिद्धार्थ शंकर महारणा उपस्थापना सुकांति महांती आकाशवाणी ब्रह्मपुर केन्द्र प्रस्तुत।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आरंभ करुछु ओडिया कथा चित्र गीतर कार्यक्रम।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: अच्छा दास बाबू, आपणको घरटा 1970 रे तयार हितला, राइट? हेले ए पर्यंत एते स्ट्रांग केमिति अछि?
4: अरे एटा एकदम सिंपल, एवं सहीथि पई मु सेतेबेले मोर विश्वास रखीतिली, एवं आजि मध्य चेटिनाड सिमेंट उपरे
5: शक्ति जहां वर्ष वर्ष नुहे बरं पीढ़ी पाई रही थाए। चेटिनाड सिमेंट सुपर ग्रेड सिमेंट 64 वर्षर दृढ़ मूल दुआ। चेटिनाड सिमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
3: अच्छा दास बाबू, आपणको घरटा 1970 रे तयार हितला, राइट? हेले ए पर्यंत एते स्ट्रांग केमिति अछि?
4: अरे एटा एकदम सिंपल, एवं सहीथि पई मु सेतेबेले मोर विश्वास रखीतिली, एवं आजि मध्य चेटिनाड सिमेंट उपरे
5: शक्ति जहां वर्ष वर्ष नुहे बरं पीढ़ी पाई रही थाए। चेटिनाड सिमेंट सुपर ग्रेड सिमेंट 64 वर्षर दृढ़ मूल दुआ। चेटिनाड सिमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
6: कस्टमर केयर तरफ फोन आसीथिला, कहुथिले तमरो 50,000 रिवार्ड पॉइंट्स एक्सपायर हेइ जिवो। ए लिंक परथि एपीके डाउनलोड करिनियंतु।
7: ठीक लागुनी, स्कैम भी हेइ पारे।

0: करंतु नहीं। साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 मने रखंतु। SBI सचेतन रहंतु, सुरक्षित रहंतु।
1: अच्छा दास बाबू, आपणको घरटा 1970 रे तयार हितला, राइट? हेले ए पर्यंत एते स्ट्रांग केमिति अछि?
2: अरे एटा एकदम सिंपल, एवं सहीति पाई मु सेतेबेले मोर विश्वास रखीतिली, एवं आजि मध्य चेटिनाड सिमेंट उपरे
3: शक्ति जहां वर्ष वर्ष नुहे बरम पीढ़ी पाई रही थाए। चेटिनाड सिमेंट सुपर ग्रेड सिमेंट 64 वर्षर दृढ़ मूल दुआ। चेटिनाड सिमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
4: यहां खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
5: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
4: यहाँ होती है सीधी, सटीक और सच्ची खबरें।
5: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहे हैं,
4: क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। डीडी न्यूज, केवल खबर, पूरी खबर।
1: अच्छा दास बाबू, आपणको घरटा 1970 रे तयार हितला, राइट? हेले ए पर्यंत एते स्ट्रांग केमिति अछि?
2: अरे एटा एकदम सिंपल, एवं सहीति पाई मु सेतेबेले मोर विश्वास रखीतिली, एवं आजि मध्य चेटिनाड सिमेंट उपरे
3: शक्ति जहां वर्ष वर्ष नुहे बरम पीढ़ी पाई रही थाए। चेटिनाड सिमेंट सुपर ग्रेड सिमेंट 64 वर्षर दृढ़ मूल दुआ। चेटिनाड सिमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
6: बदलाओ बदलाओ अभ्यास बदलाओ।
7: मशीन रे लुगा पकेबा पूर्वरु चेक करी नथिलो कि?
6: बदलाओ बदलाओ अभ्यास बदलाओ। एबे निकटस्थ बैंक जाई फटा पुराना नोट बदलांतु। जदि बैंक मना करे तो RBI रो ओम्बड्समैन पाखरे अभियोग करंतु। RBI कहे सचेतन हुवंतु, सतर्क रहंतु।

0: ए गाँर केमिति उन्नति हब
1: बरसा जल अमल
0: सेटा मुख्य भाई
1: पानी बही जाउची
0: हां परा
1: किरोट समय रे मिलुनी
0: ना
1: तेनु वर्तमान बरसा जल को केमिति अमल करिबा
0: एही समय रे आमे अमल करिकि रखिले भविष्य तरे काम रे लागिबो
1: विशेषज्ञ को परामर्श रोबा
0: आउ
1: बासो को जानि कि हबो
0: हां आउ अरमा सफा सफी चली छि सब हमर एही युवा पीढ़ी भाई भौणी माने करूचंती ना
1: परिवेश को सफा सुतुरा रखिबा एक
0: हां
1: उसुम सुमु खाद्य खाइबा जेहेतु चतुर्मासिया दुई
0: हां
1: दिहा हाथ रे टिके भले रे तेल माखी
0: चारि
1: नंबर कथाटा होउची एया
0: कोन
1: बरसा जल को अमल करिया माने साहित्यकी रखिबा
0: आउ ए जो बेळकाळ ए जो अनियमितता पानी पाग आउ ए जल मुंदे न रखिले आउ भविष्यतरे केमिति कोन करिबा
1: तिमे तो आइला बेळ ठु खाली गपुचो
0: मला मु गपुच ना आपण गपुचंतिबा
1: मु गपिली
0: ए भाई आज गोटे भल आलोचना शुणा बैठक घर को आसीचे बसीचे आलोचना शुणा नहीं मुख्य पाठ
1: मना कली
0: खरीफ धान फसल रे जैविक उपाय रे रोग पोक दमन
1: बढ़िया पाठ
0: ए विषय रे आलोचना करिबे तापस रंजन साहू
1: बस आलोचना आरंभ हो
0: आमे बसी शुणा
2: आसंतु तापस बाबू आपनकु स्वागत करूछु आमर कृषि संसार कार्यक्रम को नमस्कार
3: नमस्कार
2: प्रथमे आमकु कुहंतु वर्तमान धान फसल रे जैविक उपाय रे रोगपोक परिचालन रो कोन आवश्यकता रहिछि
3: वर्तमान आमे मनुष्य समाज कृषि क्षेत्र रे व्यवहार करथुवा बहुत परिमाण रे रासायनिक द्रव्य मानक द्वारा जल मृतिका ओ वायु प्रदूषण हेबा सहित जैवमंडल रो विविधता मध्य क्षीण होउछि जोटा को आमे बायोडायवर्सिटी कहुचे एहा हम पई एक सतर्कतार घंटी बजाइछि आमे माने आजिटु जदि सचेतन न हेबा तबे एहार भयावह परिणाम आमकु जलवायु परिवर्तन संज्ञा नै विभिन्न प्रकार प्राकृतिक दुर्विपाक ओ स्वास्थ्यगत समस्या रूपरे देखा दबो एणु आमे माने कृषि क्षेत्र रे किभलि कम रासायनिक द्रव्य व्यवहार करी निज स्वास्थ्य तथा परिवेश रो सुरक्षा को प्राधान्य देबा पई जनसचेतनता सृष्टि करबा आवश्यक अछि तेणु धान चाष रे मुख्यतः आमे माने व्यवहार करथुवा रासायनिक कीटनाशक को व्यवहार बंद करी जदि जैविक उपाय रे रोगपोकर परिचालना करि परिबा तबे आमे उत्तम गुणवत्ता कृषिजात द्रव्य पाइबा सह कीटनाशक अवशेषांश रहित बा जोटा आमे पेस्टिसाइड रेसिड्यू रही नथिबो जो खाद्य आमे से खाद्य पाई परिबा तेणु विभिन्न प्रकार स्वास्थ्यगत समस्या ओ माटी रा उत्तम स्वास्थ्य बजाय रखिया पई कीटनाशक मानंकर व्यवहार संपूर्ण रूपे वर्जन्य हेबा आवश्यक
2: एबे चासी भाई को मनरे गोटे स्वत प्रश्न आसुथिबो जे धान चासरे कम खर्च रे आमे किभली भाबे जैविक उपाय रोगपोकर परिचालन करि परिबा ए विषय रे आपण कोन कहिबे
3: जदि आमे सबुटु कम खर्च रे रोगपोक परिचालन करिया को चाहुचंती तेबे जोटा आमर चासवास पद्धति बा कल्चरल प्राक्टिस आमे सेटा कहुचु सेही माध्यम रे आपण माने सबुटु कम खर्च रे रोगपोक परिचालन करि परिबे सर्वप्रथमे आमे जदि सुस्थ मंजी व्यवहार करिबा तेबे सुस्थ फसल रा आशा रखि परिबा बहु समय रे मंजी ही बहुत रोग ओ पोकर बाहक होइताय तेणु सुस्थ ओ निरोगा मंजी व्यवहार कले परवर्ती समय रे फसल रे रोगपोकर प्रादुर्भाव कम होइताय जदि आमे धान चाष को गुरुत्व दे कहिबा तेबे मुख्य पोक मानक मध्यरे कांडबिंधा पोक जोटा आमर पत्रमोड़ा पोक एही सब आदि अन्यतम किंतु कांडबिंधा पोक रो निराकरण पाई जदि धान रोइबा पूर्वरु तळीर अगपत्र को काटिकी आमे रोइबा तेबे कांडबिंधा पोकर अंडा गुडी को नष्ट होइ जानि कारण सेमाने से अगरे ही केवल अंडा देथांदी आउरी मध्य जदि आमे गुंजी गुंजी न रोई छाड़ी छाड़ी धाड़ी रे रोइबा तेबे मध्य एही पोकर प्रादुर्भाव कमी जीव
2: एडी सर गोटे कथा कहंतु आमर माटिया गुंडी बा चकड़ा पोक को आमे केउ भली उपाय रे दमन करि परिबा
3: एईटा जेमती आमर कांडबिंधा पोक गोटे मुख्य पोक सेभली माटिया गुंडी पोक बा जोटा आमर चकड़ा पोक सेईटा मध्य गोटे मारात्मक पोक खाली माटिया गुंडी पोक नुहे एही श्रेणी अन्य शोषक कीट मान को मध्य आमे सुपचारण करि हबो एही जातीय पोक अंधारुआ परिवेश दरकार करथांदी मात्र जदि आमे छाड़ी छाड़ी धाड़ी रे रोही प्रति आठ दस धाड़ी मध्य एक फुट ओसार एक पाई छाड़ी देवा तेज सूर्य किरण चलाचल सठिक भाव होई एही पोकर उपद्रव कमी जाई परिबो अधिक जबखारा जन जातीय सार प्रयोग रो बारण आदि चकड़ा पोक परिचालना पई उपादेय
2: आउ एभली किछि चास पद्धति अछि कि जहां रोग पोक परिचालना रे सहायक हेबो
3: हां आज्ञा अन्यान्य चास पद्धति जोडा आमे कल्चरल प्रैक्टिस कहुचे जथा रोग पोक सहणी किसम रो व्यवहार जोडा आमे रेजिस्टेंट वैरायटी कहुचे जंता फसल बा ट्रैप क्रॉप संग आकर्षक जनता जोटा फेरोमोन ट्रैप कहुचे आलोक जनता लाइट ट्रैप ओ पक्षी विश्राम करिया स्थान जोटा आमे कहुचे बार्ड परचेस उद्भिद जात उत्पाद आदि व्यवहार करी आमे जैविक उपाय रोग पोक परिचालना करि परिबे एबे धान बहुत रोग पोक सहणी किसम बाहरलानी जहार व्यवहार कले आमे रोग पोक दाउरु निश्चय रक्षा पाई परिबा उदाहरण स्वरूप ओयुटर बाहरी थिबा हसंत किसम जोटा अछि धान सेटा माटिया गुंडी पोक सहणी किसम अटे सेहिपरि

ये आकाशवाणी है। अब प्रस्तुत है आज महाप्रभु जगन्नाथ जी के धाम ओडिशा के पावन क्षेत्र पुरी में आयोजित रथ यात्रा पर समेकित रेडियो रिपोर्ट। यह घंटनाद या कोलाहल या जयघोष किसी के आगमन की सूचना देता है। किसका आगमन हो रहा है? कौन है ऐसा जिसके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं लाखों श्रद्धालु और भक्तजन? कोलाहल के बीच से जो एक स्वर उभर कर आ रहा है वह है जय जगन्नाथ। आज यहां उपस्थित सभी भक्तजनों के कंठ में यह एक ही ध्वनि है, जय जगन्नाथ। प्राचीन उत्कल प्रदेश जो वर्तमान में ओडिशा के नाम से जाना जाता है उसका एक स्वतंत्र परिचय है, वह है प्रभु जगन्नाथ। विश्व भर में यह प्रदेश जगन्नाथ जी की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है क्योंकि ओडिशा के समुद्री तट स्थित पुरी शहर में विराजते हैं भगवान जगन्नाथ अपने अग्रज भगवान बलभद्र तथा बहन देवी सुभद्रा जी के साथ। कहा जाता है कि यह उनका मानवीय लीला क्षेत्र है, अर्थात प्रभु यहाँ वह सब कुछ करते हैं जो एक साधारण मनुष्य अपने जीवन में करता है। प्रभु के सारे विधि विधान मानवीय दिनचर्या के समान है। सदियों से चली आ रही परंपरा के अनुसार सभी विधियां संपन्न की जाती हैं। उसी परंपरा का एक अंश है भगवान जगन्नाथ जी की वार्षिक रथ यात्रा। शास्त्रानुसार रानी गुंडीचा को दिए गए वचन को निभाने के लिए भगवान वर्ष में एक बार गुंडीचा मंदिर की यात्रा करते हैं। वहीं एक मान्यता और भी है कि मंदिर में प्रवेश न कर पाने वाले अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए, उन पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाने के लिए भगवान अपने मूल स्वरूप में ही मंदिर से बाहर आ जाते हैं। शास्त्र पुराणों में किए गए वर्णन के अनुसार भगवान की इस रथ यात्रा का विशेष महत्व है। कहा गया है कि रथारूढ़ भगवान के दर्शन से जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। यही कारण है कि रथ यात्रा के दौरान प्रभु के दर्शन करने हेतु विश्व के कोने कोने से श्रद्धालु भक्तजन पुरी आ पहुंचते हैं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि के दिन भगवान की रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है।

रथ यात्रा का आयोजन भले ही आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के दिन होता हो, परंतु इस महोत्सव की तैयारियां बहुत पहले ही शुरू हो जाती हैं। भगवान की यात्रा के लिए हर वर्ष 3 रथ नए सिरे से बनाए जाते हैं। इसके लिए काष्ठ संग्रह का कार्य वसंत पंचमी के पावन दिन से शुरू होता है। रथ निर्माण का कार्य भगवान के विशेष सेवक वंशानुक्रमिक रूप से करते हैं। रथ निर्माण एक चरणबद्ध कार्यक्रम है। रामनवमी से लकड़ियों को चीरने का कार्य शुरू होता है। अक्षय तृतीया के पवित्र दिन से प्रारंभ होता है रथ निर्माण का कार्य। फिर नियमित समय व्यवधान से रथों के पहियों तथा अन्य हिस्सों को प्रस्तुत किया जाता है। रथों के निर्माण में विश्वकर्मा, लोहार, दर्जी, चित्रकार आदि सेवकों की बड़ी भूमिका होती है। उधर अक्षय तृतीया से आरंभ होती है चंदन यात्रा। इस दौरान विग्रहों को नरेंद्र सरोवर में नौका विहार कराया जाता है। स्नान पूर्णिमा के दिन भगवान के विग्रहों को रत्न वेदी से स्नान मंडप लाया जाता है। स्नान के पश्चात प्रभु को गज वेश में सजाया जाता है। अत्यधिक स्नान से प्रभु ज्वर से पीड़ित होते हैं, तब 15 दिनों के लिए उन्हें एकांतवास में रखकर उनका उपचार किया जाता है। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के पूर्व दिवस अर्थात प्रतिपदा के दिन भगवान नव यौवन वेश में भक्तों को दर्शन देते हैं। रथ यात्रा का मुख्य महोत्सव पुरी में आयोजित होता है, जिसमें भगवान मुख्य मंदिर से निकलकर गुंडीचा मंदिर की यात्रा करते हैं। वहां 1 सप्ताह के अवस्थान के पश्चात पुनः रथारूढ़ होकर वापस मुख्य मंदिर में लाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में बाहुड़ा यात्रा कहा जाता है। आज आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के पावन दिवस के अवसर पर पुरी में इस महोत्सव का आयोजन किया गया। मौसम विभाग द्वारा पुरी तथा आसपास के कई जिलों में

मध्यम से भारी वर्षा के पूर्वानुमान की परवाह किए बिना लाखों की संख्या में भक्तजन पूरी पहुंचे थे। मन में जहां दृढ़ भक्तिभाव होता है, वहां मनुष्य हर विघ्न को पार कर जाता है। इसी बात का प्रत्यक्ष प्रमाण था यहां उमड़ा भारी जनसमूह। श्री मंदिर के नाम से जाने जाने वाले मुख्य मंदिर को फूलों से सजाया गया था। मंदिर के सिंह द्वार के सामने तैयार खड़े थे 3 सुसज्जित रथ, लाल और हरे रंग का भगवान बलभद्र जी का रथ ताल ध्वज, बीच में लाल और काले रंग के वस्त्रों से सज्जित देवी सुभद्रा जी का रथ देवदलन, और द्वार के समीप था लाल और पीले रंगों के वस्त्रों से सज्जित भगवान जगन्नाथ जी का रथ नंदीघोष। मार्ग पर आकी गई रंगोलियां सभी का मन मोह रही थी। आसमान में छाए बादल बीच बीच में बरस पड़ते थे, परंतु यह बारिश भक्तों के उत्साह में किसी प्रकार की कमी ना ला सकी। बारिश होने के समय भक्तों के द्वारा उपयोग में लाए गए रंगीन छाते एक अद्भुत दृश्य प्रदान कर रहे थे। कोई भजन कर रहा था तो कोई कीर्तन, तो कोई अपनी नृत्य कला अथवा रण कौशल का प्रदर्शन कर भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा था।

एक विधि के अनुसार भगवान के रथों पर ध्वज तथा कलश की स्थापना की गई। ब्राह्मणों द्वारा रथ प्रतिष्ठा की विधि संपन्न होने के बाद शुरू हुई पहुंडी की विधि। पहुंडी का शाब्दिक अर्थ है धीरे धीरे कदम दर कदम आगे बढ़ना। इस विधि के अंतर्गत यहाँ दंड रूपी भगवान सुदर्शन और देवी सुभद्रा को भक्तजन बिना भूमि को स्पर्श कराए कंधों पर उठाकर मंदिर के रत्न सिंहासन से रथों तक लाते हैं। वहीं भगवान बलभद्र तथा जगन्नाथ जी को एक एक कदम बढ़ाते हुए लाया जाता है। क्रमानुसार सुदर्शन जी, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा तथा जगन्नाथ जी की पहुंडी विधि संपन्न हुई। भगवान के आयुध सुदर्शन जी को देवी सुभद्रा जी के रथ पर स्थापित किया गया। टाहिया कहे जाने वाले फूलों से सजे विशाल मुकुट से सज्जित भगवान की शोभा अवर्णनीय थी। भगवान की इस आकर्षक विधि का दर्शन करने के लिए आए भक्तों से मुख्य मार्ग मानो पूर्ण रूप से भरा हुआ था। भगवान के रथारूढ़ होने के साथ साथ यात्रा के लिए उनकी आवश्यक सामग्रियों को भी रथों पर रखा गया। प्रभु के रथारूढ़ होने के पश्चात परंपरा के अनुसार पूरी गोवर्धन मठ के शंकराचार्य ने अपने शिष्यों के साथ आकर भगवान के दर्शन किए। अगला अनुष्ठान था छेरा पहरा। परंपरा के अनुसार इस विधि में भगवान के प्रथम सेवक कहे जाने वाले पुरी के गजपति महाराज स्वयं अपने महल से एक पालकी पर सवार होकर आते हैं और अपने हाथ में सुवर्ण मार्जनी लेकर रथों की सफाई का कार्य करते हैं। यह विधि इस बात को दर्शाती है कि भगवान के आगे राजा और रंक में कोई भेद नहीं है। भगवान के आगे सभी समान हैं। सफेद राजसी पोशाक में गजपति महाराज लाल रंग की पालकी पर सवार होकर महल से रथों तक पधारे। फिर बारी बारी से एक एक रथों पर महाराजा ने सेवकों द्वारा डाले गए फूलों की प्रतीकात्मक रूप से सफाई की। छेरा पहरा विधि को संपन्न कर महाराज ने भगवान की आरती की और महल की ओर प्रस्थान किया। अब बारी थी रथों पर चढ़ने के लिए लगाई गई सीढ़ियों को खोलने की। सीढ़ियों को खोलने के पश्चात रथों से सार

0: अश्वों तथा रज्जुओं को संयुक्त किया गया। अब वह क्षण आ पहुंचा था जिसका हर भक्त को बड़ी बेसब्री से इंतजार था। रथों को खींचने का समय हो गया था। बड़े ही उत्साह के साथ भक्तजन पहले बलभद्र जी, फिर देवी सुभद्रा और अंत में भगवान जगन्नाथ जी का रथ खींचते हैं। सूर्यास्त तक रथों को खींचा जाता है। गुंडीचा मंदिर तक न पहुंचने की स्थिति में रथों को अगले दिन सूर्योदय के पश्चात फिर से खींचा जाता है। इतने विशाल आयोजन में कानून व्यवस्था बनाए रखने, सभी आवश्यक सेवाओं को सुगमता से उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार के विभिन्न विभाग, स्थानीय इकाइयों तथा स्वयं सेवकों की भूमिका सराहनीय रही। पूरी न आ पाने वाले श्रद्धालुओं को रथ यात्रा का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान कराने के लिए आकाशवाणी ने क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ अंग्रेजी और हिंदी में आंखों देखा हाल सुनाने का प्रबंध किया था।
1: ये तीनों रथ पूरी तरह से बरसात में भीगे हैं। लाखों श्रद्धालु, बरसात लगातार जारी है फिर भी उन्हें इसकी परवाह नहीं है। उनके आगे उनके आराध्य देव जगत के नाथ प्रभु जगन्नाथ विराजमान हैं। वो स्वयं भीग कर रत्न सिंहासन छोड़कर जब रथ रूपी मंदिर में काष्ठ सिंहासन पर विराजमान होने के लिए आए हैं और भक्तों को अपना दर्शन देने के लिए आए हैं, तो उनके आगे सामान्य भक्त की भला क्या औकात है। तो सारे भक्त सब कुछ भुलाकर अपने आराध्य देव को अपने सम्मुख पाकर वो धन्य हुए हैं। काफी संख्या में यहाँ भक्त मौजूद हैं। इस बीच हमारे सामने, हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं अहमदाबाद से आई मूल अमृतसर की निवासी अंजलि जी। वो रथ यात्रा दर्शन के लिए आई हैं, हम उनसे बात करेंगे। तो अंजलि जी, स्वागत है आपका जगन्नाथपुरी में। आपको यहाँ आकर कैसा लग रहा है?
2: ये खूबसूरत नजारा आज तक मैंने कभी देखा नहीं था। इतना बड़ा त्योहार की तरह इसको मनाया जाना मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ये देख पाऊंगी। जो इन पलों का मैं अनुभव कर रही हूँ वो मैं बता नहीं सकती शब्दों में कि इतना प्यारा अनुभव, इतना सुंदर अनुभव कैसे मुझे मिला मुझे नहीं पता। लेकिन इस समय जो मैं अनुभव महसूस कर रही हूँ वो मेरे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हर भक्त अपने अपनी जगह से जुड़ा हुआ है और अपनी अपनी भक्ति में इतना लीन है कि उसको अपनी ना बारिश की परवाह है, ना अपनी भूख की परवाह है, ना किसी भी चीज की परवाह है, और वो वहीं पे खड़ा हुआ है भगवान के दर्शनों के लिए। इतना इतना इतना उत्सुक है कि मेरे पास शब्द नहीं है। हर इतने लाखों लोगों में सब में इतना प्यार भावना भगवान के प्रति जो मैंने देखे मैंने आज तक कभी देखी ही नहीं है।
1: धन्यवाद अंजलि जी।
0: यह रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने तक भगवान बलभद्र जी का रथ खींचा जा चुका था और देवी सुभद्रा जी के रथ को खींचने की तैयारियां चल रही थी। अभी आप सुन रहे थे आज महाप्रभु जगन्नाथ जी के धाम ओडिशा के पावन क्षेत्र पुरी में आयोजित हुई रथ यात्रा पर समेकित रेडियो रिपोर्ट। आलेख एवं वाचन स्वर प्रकाश चंद्र दवे, प्रस्तुति सहयोग अक्षय कुमार सेठी, प्रस्तुतकर्ता थे विनय कुमार सामंतराय। आकाशवाणी के कटक केंद्र के सौजन्य से प्राप्त यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
3: ଶୁଣୁଥିଲେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘୋଷଯାତ୍ରା ଉପଲକ୍ଷେ ବେତାର ବିବରଣୀ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ। ଆକାଶବାଣୀ କଟକ।
4: ଆଚ୍ଛା ଦାସ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କ ଘରଟା 1970ରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ରାଇଟ? ହେଲେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କେମିତି ଅଛି?
5: ଆରେ ଏଇଟା ଏକଦମ ସିମ୍ପଲ, ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିଲି ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଚେଟିନାଡ ସିମେଣ୍ଟ ଉପରେ।
6: ଶକ୍ତି ଯାହା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ନୁହେଁ ବରଂ ପିଢ଼ି ପାଇ ରହିଥାଏ। ଚେଟିନାଡ ସିମେଣ୍ଟ ସୁପର ଗ୍ରେଡ୍ ସିମେଣ୍ଟ 64 ବର୍ଷର ଦୃଢ଼ ମୂଳଦୁଆ। ଚେଟିନାଡ ସିମେଣ୍ଟ ଦ ପରଫେକ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ ଚଏସ।

0: क्लिक करंतु नहीं साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 मने रखंतु एसबीआई सचेतन रहंतु सुरक्षित रहंतु।
1: अच्छा दास बाबू आपण को घरटा 1970 रे तयार हितला राइट हले ए पर्यंत एते स्ट्रांग केमिति अछि
2: अरे एटा एकदम सिंपल एवं सैथि पाई मु सेतेबेले मोर विश्वास रखितली एवं आजि मध्य चेटिनाड सीमेंट उपरे
3: शक्ति जहां वर्ष वर्ष नुहे बरम पीढ़ी पाई रही थाए चेटिनाड सीमेंट सुपर ग्रेड सीमेंट 64 वर्षर दृढ़ मूल दुआ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
0: कस्टमर केयर तरफ फोन आसीथिला कहुथिले तमरो 50,000 रिवार्ड पॉइंट्स एक्सपायर हेइ जिवो ए लिंक पर थी एपीके डाउनलोड करिनियंतु
4: ठीक लागुनी स्कैम भी हेइ पारे।

0: अजना लिंक क्लिक करंतु नै साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 मने रखंतु SBI सचेतन रहंतु सुरक्षित रहंतु।
1: अच्छा दास बाबू आपण को घरटा 1970 रे तयार हितला राइट हेले ए पर्यंत एते स्ट्रांग केमिति अछि
2: अरे एटा एकदम सिंपल एवं सेथि पई मु सेते बेले मोर विश्वास रखितली एवं आजि मध्य चेटिनाड सिमेंट उपरे
3: शक्ति जहां वर्ष वर्ष नहे बरम पीढ़ी पाई रही थाए चेटिनाड सिमेंट सुपर ग्रेड सिमेंट 64 वर्षर दृढ़ मूल दुआ चेटिनाड सिमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
1: अच्छा दास बाबू आपण को घरटा 1970 रे तयार हितला राइट हेले ए पर्यंत एते स्ट्रांग केमिति अछि
2: अरे एटा एकदम सिंपल एवं सेथि पई मु सेते बेले मोर विश्वास रखितली एवं आजि मध्य चेटिनाड सिमेंट उपरे
3: शक्ति जहां वर्ष वर्ष नहे बरम पीढ़ी पाई रही थाए चेटिनाड सिमेंट सुपर ग्रेड सिमेंट 64 वर्षर दृढ़ मूल दुआ चेटिनाड सिमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
1: अच्छा दास बाबू आपण को घरटा 1970 रे तयार हितला राइट हेले ए पर्यंत एते स्ट्रांग केमिति अछि
2: अरे एटा एकदम सिंपल एवं सेथि पई मु सेते बेले मोर विश्वास रखितली एवं आजि मध्य चेटिनाड सिमेंट उपरे
3: शक्ति जहां वर्ष वर्ष नहे बरम पीढ़ी पाई रही थाए चेटिनाड सिमेंट सुपर ग्रेड सिमेंट 64 वर्षर दृढ़ मूल दुआ चेटिनाड सिमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
4: सुनंतु नीलिमा पंडांग कंठरे ओडिसी गीतटी शिल्पी कंठरे लोकनाथ पटनायक रचना।
1: अच्छा दास बाबू आपण को घरटा 1970 रे तयार हितला राइट हेले ए पर्यंत एते स्ट्रांग केमिति अछि
2: अरे एटा एकदम सिंपल एवं सेथि पई मु सेते बेले मोर विश्वास रखितली एवं आजि मध्य चेटिनाड सिमेंट उपरे
3: शक्ति जहां वर्ष वर्ष नहे बरम पीढ़ी पाई रही थाए चेटिनाड सिमेंट सुपर ग्रेड सिमेंट 64 वर्षर दृढ़ मूल दुआ चेटिनाड सिमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
1: अच्छा दास बाबू आपण को घरटा 1970 रे तयार हितला राइट हेले ए पर्यंत एते स्ट्रांग केमिति अछि
2: अरे एटा एकदम सिंपल एवं सेथि पई मु सेते बेले मोर विश्वास रखितली एवं आजि मध्य चेटिनाड सिमेंट उपरे
3: शक्ति जहां वर्ष वर्ष नहे बरम पीढ़ी पाई रही थाए चेटिनाड सिमेंट सुपर ग्रेड सिमेंट 64 वर्षर दृढ़ मूल दुआ चेटिनाड सिमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।

0: ଶୁଣୁଥିଲେ ନୀଳିମା ପଣ୍ଡାଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ କେତେଗୋଟି ଓଡ଼ିଶୀ ଗୀତ। ଆକାଶବାଣୀ କଟକ, ସମୟ ରାତି 8:45 ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। भारत ने 1 अरब से ज्यादा लोगों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा शुरू, हवाई संपर्क के एक नए दौर की शुरुआत। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा में लाखों श्रद्धालु शामिल हुए। अमरीका ने उत्तरी ईरान तक हमले किए और नौसैनिक घेराबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे एक जहाज पर गोलीबारी की। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक हासिल कर लिए हैं और कार्डिफ में भारत और मेजबान इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज में 1 अरब का आंकड़ा पार कर लिया है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2026 में बढ़कर 68% से अधिक हो गया है। इससे 100 करोड़ से अधिक लोग सामाजिक सुरक्षा ढांचे के दायरे में आ गए हैं। 2015 में यह मात्र 19% था। उन्होंने कहा कि यह सबका साथ सबका विकास के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत ने इस साल 3,76,00,000 टन अनाज और 3,77,00,000 टन बागवानी उत्पादों की पैदावार की है। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि वैज्ञानिक अब किसानों के साथ मिलकर काम करने के लिए सीधे खेतों में जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत 1,600 से ज्यादा वैज्ञानिक दल 728 जिलों में पहुंचे और लगभग 1 करोड़ किसानों से उन्होंने संपर्क किया। वैज्ञानिक विशेष रूप से उन जिलों में पहुंचे जिनके अलनीनो से प्रभावित होने की आशंका है। उन्होंने बताया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने पिछले वर्ष के दौरान कई उन्नत किस्म की फसलें विकसित की हैं।
1: एक साल में 44 फसलों की 386 नई किस्में, जिनमें से 94 क्लाइमेट रिजिलेंट है, 29 बायोफोर्टिफाइड है, ये विकसित की है। बागवानी की 117 किस्में हमने अलग अलग अलनीनो के प्रभाव के कारण और वैसे भी जो संवेदनशील जिले हैं उनके लिए आकस्मिक योजना बनाई है। आज मैं गर्व से कहता हूं ICR कृषि परिवर्तन का अग्रदूत बन चुका है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित यह रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसी के साथ भारत हाइड्रोजन रेलगाड़ियां चलाने वाले जर्मनी, जापान, चीन और अमरीका के समूह में शामिल हो जाएगा। इस रेलगाड़ी को 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने के लिए डिजाइन किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस ट्रेन में कुल 10 डिब्बे हैं और इसकी शुरुआत होने से यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है जो ट्रेन को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता भी कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: अभियान। निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र शासित प्रदेश दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा आज से शुरू हो गई। ये हवाई संपर्क के एक नए दौर की शुरुआत है। नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने पहली उड़ान को दमन के नमो हवाई अड्डे से रवाना किया। यह ऐतिहासिक शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में नमो हवाई अड्डे के उद्घाटन के बाद हुई है। एक रिपोर्ट।
1: केंद्र शासित प्रदेश दमन और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बीच सीधी हवाई कनेक्टिविटी से इस क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और निवेश को काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। यात्रियों को अब लंबी सड़क या रेल यात्राओं पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, जिससे यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा। स्थानीय प्रशासन के अनुसार जल्द ही नमो एयरपोर्ट से देश भर के अन्य प्रमुख शहरों में हवाई सेवाओं को बढ़ाने की योजना पहले से ही चल रही है। प्रवेश अड़ियचा, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने आज कहा कि उड़े देश का आम नागरिक योजना के अगले चरण का उद्देश्य अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों तक कनेक्टिविटी को बढ़ाना और 4 करोड़ लोगों को विमान यात्रा में सक्षम बनाना है। नई दिल्ली में कार्यशाला में श्री नायडू ने कहा कि सरकार हवाई टिकटों की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए कई उपाय कर रही है।
2: एविएशन एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसको हमें डायनेमिक फेयर प्राइसिंग के तहत हम आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल प्रैक्टिस है। कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाना है तो एयरलाइंस को वो डायनेमिक प्राइसिंग की सुविधा हमें देनी चाहिए, जो भारत में भी हम एक्सटेंड कर रहे हैं। कई जगहों पे अगर ऐसा लगता है कि फेयर्स हद से ज्यादा हो रहे हैं तो हमने पाबंदी लगाया कि ये प्राइसिंग को रेगुलेट करेंगे।
0: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज स्वदेशी प्रौद्योगिकियों को देश भर में व्यापक स्तर पर लागू करने के लिए वैज्ञानिक संस्थानों, उद्योग और राज्य सरकारों के बीच मजबूत सहयोग का आह्वान किया। डॉक्टर सिंह ने नई दिल्ली में सीएसआईआर केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान के एक वर्षीय प्लैटिनम जयंती समारोह में ये बात कही। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के शासन में तेजी से सकारात्मक बदलाव के कारण भारत वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंचा है। चेन्नई में उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से सरकारी योजनाएं देश के सुदूरतम क्षेत्रों में रहने वाले प्रत्येक नागरिक तक पहुंच रही हैं। तृणमूल कांग्रेस की एक और राज्यसभा सांसद कोयल मल्लिक ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात कर अपना इस्तीफा उन्हें सौंपा। वो इस साल अप्रैल में राज्यसभा के लिए चुनी गई थीं। कोयल तृणमूल कांग्रेस की चौथी राज्यसभा सांसद हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है। इससे पहले सुकेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश जी बराइक ने इस्तीफा दिया था और बाद में वे भाजपा में शामिल हो गए। प्रवर्तन निदेशालय ने कथित आतंकी वित्त पोषण और अवैध घुसपैठ नेटवर्क से जुड़े एक मामले में आज पश्चिम बंगाल सहित देशभर में 13 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। एक रिपोर्ट।
3: ये मामला उत्तर प्रदेश एटीएस द्वारा रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ कराने और उनके पुनर्वास में कथित रूप से शामिल संगठित गिरोह के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा है। पश्चिम बंगाल के कलिकपुर में हरौरा अल जमीयतुल इस्लामिया दारुल उलूम में तलाशी के दौरान 40 लाख रुपए नकद और सोने के सिक्के बरामद हुए। जांच के दौरान एक मजबूत वित्तीय नेटवर्क का खुलासा हुआ है जिसमें कुछ धर्मार्थ ट्रस्ट और संस्थाएं शामिल हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में आज भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा निकाली गई। सुबह से लगातार बारिश के बावजूद लाखों श्रद्धालु बड़ा डंडा पर इस पवित्र दृश्य को देखने के लिए जुटे हुए थे।
4: पुरी का पवित्र शहर भक्ति के सागर में आज डूबा रहा, क्योंकि पहंडी विजय और छेरा पहरा की पवित्र रस में पूरी होने के बाद लाखों भक्तों ने भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के भव्य रथों के ग्रैंड रोड पर खिसने की रस्म में हिस्सा लिया। रात होने पर रथ खिसने का काम आज के लिए रोक दिया गया है और पवित्र श्री गुंडीचा मंदिर तक की दिव्य यात्रा कल फिर शुरू होगी। हालांकि श्री गुंडीचा मंदिर के पास भगदड़ जैसी घटना से उत्सव का माहौल प्रभावित हुआ, जिसमें खबर है कि एक भक्त की मौत हो गई। गई और कई अन्य घायल हो गए। गंभीर रूप से घायलों को

0: इलाज के लिए पास के अस्पतालों में भेजा गया है। उड़ीसा सरकार ने इस घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही उत्सव के बाकी दिनों के लिए सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के इंतजाम और कड़े कर दिए गए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, पुरी।
1: इस बीच गुजरात, झारखंड और दिल्ली सहित देश भर में विभिन्न स्थानों पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हर्षोल्लास के साथ निकाली गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जगन्नाथ रथ यात्रा के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कच्छ के नववर्ष आषाढ़ी बीज के अवसर पर कच्छी समुदाय को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आषाढ़ी बीज कच्छी समुदाय की चिरस्थायी सांस्कृतिक विरासत और मजबूत भावना को दर्शाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीएसई पाठ्यक्रम के तहत नवीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई है और कहा है कि इससे विद्यार्थियों में तनाव बढ़ेगा। न्यायालय ने सुझाव दिया है कि इसे पांचवीं या छठी कक्षा में शुरू करना चाहिए ताकि विद्यार्थी इसे आसानी से अपना सकें। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
2: घरेलू शेयर बाजार में आज सेंसेक्स में केवल एक अंक की बढ़त हुई और ये 77,187 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 6 अंक गिरकर 24,073 पर पहुंच गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार के मिड कैप में 0.4% और स्मॉल कैप में 0.1% की गिरावट आई। वहीं अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 9 पैसे गिरकर 96.35 रूपये पर बंद हुआ।
1: अमरीका ने ईरान पर हमले और तेज कर दिए हैं। आज उत्तर में स्थित ठिकानों को निशाना बनाया गया और अमरीकी नौसैनिक नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे एक जहाज पर भी गोलीबारी की गई। जवाब में ईरान ने क्षेत्र में अमरीका के सहयोगी देशों को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। ईरान ने धमकी दी है कि अगर अमरीका पुलों और बिजली संयंत्रों को निशाना बनाता है तो ईरान क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे पर व्यापक हमले कर सकता है। इंडोनेशिया के जकार्ता में भारतीय मुक्केबाजों ने एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक अपने नाम कर लिए हैं। अंडर 23 वर्ग में विश्वनाथ सुरेश और गंगा ने स्वर्ण और वंशज ने रजत पदक अपने नाम किया। अंडर 19 में आदित्य और शुभम राजपूत ने रजत पदक हासिल किए। कार्डिफ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 42 ओवर में 8 विकेट पर 214 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों में पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 3 से 4 दिनों तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में तथा 22 जुलाई तक राजस्थान में भी वर्षा होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने मछुआरों को 21 जुलाई तक दक्षिण पश्चिमी अरब सागर में और अगले 2 दिनों तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी और आसपास के इलाकों में न जाने की सलाह दी है। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने 1 अरब से ज्यादा लोगों को सामाजिक सुरक्षा कवरेज के दायरे में लाकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा शुरू हुई। हवाई संपर्क एक नए दौर की शुरुआत। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा में लाखों श्रद्धालु हुए शामिल। अमेरिका ने उत्तरी ईरान तक हमले किए और नौसैनिक घेराबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे एक जहाज पर गोलीबारी की। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की है। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक हासिल कर लिए हैं। और कार्डिफ में भारत और मेजबान इंग्लैंड के बीच 2 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी है। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम साइरा मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। The headlines. India achieves major milestone bringing over 1 billion citizens under social protection framework.

0: Spotlight. This is Akashvani. In the program Spotlight, now we bring you a discussion on Semicon 2.0, new push to strengthen India's semiconductor ecosystem. The participants are Ashok Chandak, President, India Electronics and Semiconductor Association, and Subimal Bhattacharji, IT and Technology Expert. Moderator is Anubha Rohatgi.
1: Mr. Chandak, welcome to Akashvani's Spotlight program.
2: Good evening.
1: Before we begin this discussion, let's listen into what Union Minister Ashwini Vaishnav said about the Union Cabinet's decision yesterday on the Semicon 2.0 program.
3: सेमिकॉन 2.0 127,500 करोड़ रुपए का सेमिकॉन 2.0 आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया. हम सब जानते हैं कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है जो कि आज जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग होती है, चाहे आपके हाथ में जो मोबाइल फोन है, जो कैमरा है, घर में फ्रिज, टीवी, एसी, स्कूटी, कार, ट्रेन, चाहे मिसाइल्स हो, कुछ भी हो, सब में सेमीकंडक्टर चिप्स लगती है. और इलेक्ट्रॉनिक्स अपने आप में बहुत ही

0: Countrywide. ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्रीवाइड। इसके अंतर्गत सुनिए विकसित भारत की कृषि यात्रा में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के योगदान पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर मांगीलाल जाट। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति।
1: श्रोताओं, भारत कृषि प्रधान देश इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत जहां एक तरफ बहुतायत में अनाज या अन्न का उत्पादन करता है तो दूसरी तरफ भारत की जो खेती है वो वैज्ञानिक और उन्नत है और तकनीकी रूप से सक्षम है। भारत की खेती को इतना उन्नत, तकनीकी रूप से सक्षम और भारत के अन्न भंडारों को लगातार भरने का जो एक बीड़ा उठाते हैं हमारे कृषक उठाते हैं, लेकिन कृषकों के समर्थन और उनकी सहायता के लिए बहुत से संस्थान भी काम करते हैं।

0: भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एक ऐसा ही संस्थान है जिसने लगभग 98 वर्षों से देश की सेवा की है, कृषि क्षेत्र को लगातार समृद्ध बनाया है। तो आज हम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 98 स्थापना दिवस के अवसर पर और जिस तरह से इस संस्थान ने भारत को कृषि प्रधान देश और उन्नत कृषि के मामले में सक्षम बनाने में जो भूमिका निभाई है उस पर हम विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर मांगीलाल जाट कार्यक्रम में जुड़े हैं। डॉक्टर मांगीलाल, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: सबसे पहले तो आपको जो ये लंबा सफर रहा है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का और 98वां जो स्थापना दिवस मनाया है उसकी बहुत सारी शुभकामनाएं, और चर्चा की शुरुआत इससे ही करते हैं कि जो ये एक पूरा सफर रहा है, कैसे आप देखते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के भारत की खेती के लिहाज से इस सफर को, क्या सबसे बड़ा योगदान आप मानते हैं इस संस्थान का?
1: धन्यवाद। सबसे तो पहले मैं आज अपने श्रोताओं को, स्पेशली हमारे किसानों को मुबारकबाद भी देना चाहता हूं, धन्यवाद भी देना चाहता हूं। आज इस 98वें स्थापना दिवस के मौके पे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का 97 साल का ये सफर, क्योंकि 98वां स्थापना दिवस आज मनाया है, काफी गौरवशाली रहा है। यदि आप देखें तो हम खाद्यान्न में, हॉर्टिकल्चर में, लाइव स्टॉक सेक्टर में, फिशरीज सेक्टर में हमने जो सफर तय किया है वो बहुत अद्भुत है। हमें आयात पर निर्भर होना होता था। आज हमारे देश में अन्न के भंडार इतने भरे हुए हैं। आज हमारा जो एवर हाईएस्ट रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रोडक्शन जो इस साल का मैं बताऊं आपको, 376.7 मिलियन टन हमारा फूड ग्रेन का प्रोडक्शन एवर हाईएस्ट, 377 मिलियन टन हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्शन एवर हाईएस्ट, मिल्क का प्रोडक्शन एवर हाईएस्ट, लगभग 20 मिलियन टन के आसपास फिश का प्रोडक्शन एवर हाईएस्ट। ये सारा का सारा जो जितना हुआ है इसके बैकग्राउंड में विज्ञान, तकनीकी, पॉलिसी, किसानों की मेहनत सारा शामिल है, और ये पूरा इकोसिस्टम के साथ ही भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पूरे देश में काम करता है। ये विश्व का एक सबसे बड़ा नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन है हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। हमारे जो 114 संस्थान, हमारे 731 कृषि विज्ञान केंद्र है जिनको हम काम करते हैं, हमारे जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं 80, उनके साथ में काम करते हैं। तो एक बहुत बड़ा नेटवर्क है
0: जी।
1: और काफी हमने प्रगति की है, और स्पेशली यदि हम आज, क्योंकि आज हमारा स्थापना दिवस है, एक रिफ्लेक्शन पिछले एक साल का यदि मैं करूं तो बहुत बड़ा काम इसमें हुआ है। पिछले एक साल में हमने 19.5 मिलियन टन के लगभग फूड ग्रेन प्रोडक्शन बढ़ाया है, एक साल में 7 मिलियन टन के लगभग हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ाया है, फिशरीज का, लाइव स्टॉक का, और इन सब की यदि वैल्यू मैं करूं तो लगभग 2.25 लाख करोड़ के लगभग एडिशनल वैल्यू मैं बता रहा हूं जो एक साल में हुआ वो है। और इस सबके पीछे अनुसंधान का हाथ है, उसके साथ साथ पॉलिसी और किसान की मेहनत तो है ही है। तो ये गौरवशाली इतिहास है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का।
0: बिल्कुल, आपने जैसे कि बात की शुरुआत में ही कि जो भारत के कृषि है, या कृषि को हम अगर पूरी परिभाषा के साथ देखें तो इसमें फिशरीज है, डेयरी है, लाइव स्टॉक है, हर तरह का क्षेत्र शामिल है, और इसमें भारत के जो प्रगति है उसके आपने बहुत पॉजिटिव आंकड़े और एक समृद्ध देश के आंकड़े आपने प्रस्तुत किए। हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि वो कौन से अहम नवाचार, इनोवेशन या रिसर्च या फिर खेती के लिए बड़े पॉलिसीज रही हैं जिन्होंने भारत की खेती की तस्वीर को बदला है इन बीते कुछ वर्षों में, जिसमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की भी बहुत बड़ी भूमिका रही है।
1: सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है वो है बीज, और क्वालिटी बीज, हाई यील्डिंग सीड, क्लाइमेट रेजिलिएंट सीड, इसके ऊपर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने बहुत काम किया है। हमारा पिछले 10-11 साल का देखें तो 3000 से ज्यादा क्रॉप वैरायटी जो हमने रिलीज किए हैं उनमें से ज्यादा वैरायटीज क्लाइमेट रेजिलिएंट है। और इसी को यदि आप देखेंगे तो पिछले 10 सालों में चाहे वातावरण की विषम परिस्थितियां रही हो उसके बावजूद भी हमारा प्रोडक्शन घटा नहीं, बढ़ा है। तो क्लाइमेट रेजिलियंस बिल्ड करने में बहुत बड़ी भूमिका है, चाहे क्रॉप्स की हो चाहे हॉर्टिकल्चर की हो। उसके साथ साथ में पशुधन के कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो ब्रीडिंग और बाकी मटेरियल, इम्प्रूव्ड ब्रीड और उनकी तो बात है ही है, लेकिन पशु का स्वास्थ्य बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसके कॉन्टेक्स्ट में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने जो वैक्सीन पे काम किया है, हमने क्विकली उसको जो रेस्पॉन्ड किया है, चाहे फुट एंड माउथ डिजीज हो, चाहे लंपी स्किन डिजीज हो, और मैं मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है कि आज हमने फाउंडेशन डे के दौरान एक अफ्रीकन स्वाइन फ्लू का वैक्सीन रिलीज किया है जो एक अपने आप में ब्रेक थ्रो है। तो उसके कारण से जो एनिमल का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा है। हमारे प्राकृतिक संसाधन, क्योंकि चाहे मिट्टी हो, चाहे पानी हो, चाहे वातावरण

0: हो, उसके ऊपर हमने बहुत काम किया है। लैंड डिग्रेडेशन जो वाटर से होता था 125 मिलियन हेक्टेयर, वो कम होके 80 मिलियन हेक्टेयर हो गया है। उसके अलावा सैंड ड्यून स्टेबिलाइजेशन, चाहे आप डेजर्ट की बात करते हैं, तो उसपे काम हुआ है। हमने क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर के कॉन्टेक्स्ट में क्लाइमेट रेजिलिएंट विलेजेज बना के जो काम किया है और उसका अप स्केलिंग किया है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जिसका परिणाम देखने को मिल रहा है। हमारी ऊसर भूमि और इस तरीके की जो भूमि थी डिग्रेडेड, उनका रिक्लेमेशन का बहुत बड़ा काम हुआ है। हमने फार्म मैकेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में बहुत बड़ा काम किया है और फार्म मैकेनाइजेशन का लेवल काफी बढ़ा है, क्योंकि अभी लेबर की अवेलेबिलिटी और टाइमलीनेस ऑफ द ऑपरेशन एक काफी इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है, तो मैकेनाइजेशन पे बहुत बड़ा फोकस हमने किया है। लेकिन इसके साथ साथ ये देखेंगे कि टेक्नोलॉजी सिर्फ बनाना ही काफी नहीं है, टेक्नोलॉजी को किसान तक पहुंचाना सबसे इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है।
1: बिल्कुल, अगला सवाल मेरा डॉक्टर मांगेलाल इसी पर ही था कि जैसे ही आपने बहुत से प्रयोगों की बात की, लेकिन प्रयोगशाला से लेकर किसानों तक, खेतों तक उस तकनीक को पहुंचाना ये कितना बड़ा कदम रहा है और कैसे इसे सफलतापूर्वक पूरा किया गया है संस्थान द्वारा, इस पर भी आप प्रकाश डालें। और क्योंकि हम इन दिनों बहुत कुछ ऐसा भी सुन रहे हैं कि भविष्य में जो बीज की तकनीक है वो बिल्कुल बदलने वाली है और जो प्रयोगशालाओं में इस पर शोध भी हो रहे हैं, और हमने पहले भी देखा है कि जो एक जैविक प्रयोग होते रहे हैं फसलों को लेकर, बीजों को लेकर, ये तकनीकें किसानों तक पहुंचे, धरातल पर इनका क्रियान्वयन हो, तो कैसे संस्थान ने बड़ी भूमिका निभाई है इसमें?
0: बिल्कुल ठीक बात है आपकी। मैं ये बताना चाहता हूं कि डिस्कवरी और डिलीवरी आइसोलेशन में नहीं हो सकती, और हमारा जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का जो पूरा फोकस है वो है डिस्कवरी टू डिलीवरी कॉन्टिनम। और डिस्कवरी टू डिलीवरी कॉन्टिनम के कॉन्टेक्स्ट में मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हमारा फोकस है डिमांड ड्रिवन रिसर्च। हम रिसर्च वो करें जिसकी किसान को जरूरत है, जो किसान मांगता है, और उसी कॉन्टेक्स्ट में वन वे ट्रैफिक नहीं करते हुए ये हम पार्टिसिपेटरी जो काम करते हैं कि टेक्नोलॉजी लैब में बनती है लेकिन उसका पार्टिसिपेटरी वैलिडेशन इवेल्युएशन जो हमारे प्रोग्राम्स हैं केवीकेज के थ्रू, एक्सटेंशन के थ्रू, उसपे काफी काम करते हैं। और डिलीवरी के कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके संज्ञान में होगा कि पिछले साल मई जून में हमने एक विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया। हमारे वैज्ञानिकों की 2000 से ज्यादा 2100 से ज्यादा टीम 15 दिन तक खेतों में थी, पूरे देश में 730 लगभग जिलों में, और 15 दिन में हमने लगभग 1,35,00,000 किसानों से सीधा संवाद किया। ना उस संवाद से एक तो है कि टेक्नोलॉजी किसान तक पहुंचाए, लेकिन दूसरा तथ्य उसका यह भी था कि हम किसान की डिमांड साइड को समझें, और उसी को लेते हुए हमने हमारी रिसर्च में क्या हमें नया करना है, किस चीज की डिमांड है वो कर रहे हैं। हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो लैब टू लैंड का जो फोकस है उसको ध्यान में रखते हुए हमने एक खेत बचाओ अभियान 1 जून से 30 जून के बीच में चलाया। देश में लगभग 1,650 से ज्यादा टीम उसमें फिर जुटी, और उसमें सिर्फ ICAR की बात नहीं है, हमारा फोकस है एक देश एक कृषि एक टीम, और उसी भावना को ध्यान में रखते हुए हम इस पे काम कर रहे हैं। तो हम कृषि विश्वविद्यालय स्टेट्स का जो एक्सटेंशन डिपार्टमेंट्स का जो अमला है वो भारत सरकार के डिपार्टमेंट, ICAR, हमारे इंस्टीट्यूशंस, सभी लोगों को, यूनिवर्सिटीज को मिला के, और इसके ऊपर काम किया, क्योंकि इस साल विशेष परिस्थितियां रही है, और उसमें खेत बचाओ में यही है कि फर्टिलाइजर का जो अंधाधुंध उपयोग हो रहा है उसको कैसे ठीक किए, बैलेंस कैसे करें, तो उस पर जागरूकता, प्राकृतिक खेती पे देश का बहुत बड़ा एक फोकस है तो उसकी जानकारी किसानों को वो पहुंचाएं। उसके अलावा जो एलनीनो का इफेक्ट है तो कौन सा वैरायटीज, कौन सा सीड, कौन सी क्रॉप कहां पे, इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए वो हम, उसके अलावा ये भी कर रहे हैं कि जैसे मैं एलनीनो की बात करूं तो हमने 315 जिले जो वल्नरेबल देश के हैं उनके लिए कंटिजेंसी प्लान बना के सारे स्टेट्स के राज्यों के साथ में डिस्कशन करके हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उनको पहुंचाया है। तो हम एक्सटेंशन की दिशा में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसके लिए हमारा एक पूरा एक्सटेंशन का डिवीजन है।
1: क्योंकि आपने एलनीनो की चर्चा की, उसी से मेरे मन में सवाल आया कि आने वाले समय में निश्चित तौर पर एक चुनौती तो ये रहेगी पूरी दुनिया के सामने कि दूध या खाद्यान्न की आपूर्ति बढ़ती हुई जनसंख्या के सामने रहे, हमारे देश में भी एक इतनी बड़ी जनसंख्या की पेट भरने के लिए दुग्ध उत्पादन की एक बहुत बड़ी टारगेट रहेगा, तो ऐसे में जो फसलें और जलवायु परिवर्तन भी एक चुनौती है, तो क्लाइमेट रेजिलियंट फसलें हो, ज्यादा से ज्यादा पैदावार हो, ज्यादा से ज्यादा दूध का उत्पादन हो, इन सब की चुनौतियों को लेकर क्या लक्ष्य रखता है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अपने सामने?
0: मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि जितना भी हमारा फोकस है ये क्लाइमेट रेजिलियंस के ऊपर ही है, और जो आज भी जैसे हमने वैरायटीज रिलीज की है तो 94% वैरायटीज क्लाइमेट रेजिलियंट वैरायटीज है। हमारा सारा का सारा फोकस क्लाइमेट रेजिलियंस बिल्ड करने पे है, और उसी का परिणाम है कि हमारा प्रोडक्शन क्लाइमेट की रिस्क होते हुए भी बढ़ रहा है घट नहीं रहा। लेकिन मैं क्रॉप वैरायटीज की बात नहीं कर रहा हूं, चाहे हॉर्टिकल्चर हो, चाहे लाइव स्टॉक की ब्रीड हो, चाहे फिश की ब्रीड हो, सभी में क्लाइमेट रेजिलियंस के ऊपर हमारा पूरा फोकस है। नाउ ये तो हो गया ब्रीडिंग वैरायटीज ब्रीड्स की बात, लेकिन

0: हमारा बहुत बड़ा फोकस क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर पे है। यदि आप देखें तो पिछले 15-20 साल में यदि रेनफेड एग्रीकल्चर जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल होता है क्लाइमेट चेंज के कारण से, जहां रेनफॉल की अनसर्टेनिटी होती है, डिग्रेडेड लैंड होती है, वहां पे हमने प्रोडक्टिविटी गेन इवन इरिगेटेड एरिया की तुलना में, मैं कंपेरेटिव गेन्स की बात कर रहा हूं, वो ज्यादा किए हैं। तो हमारी क्लाइमेट रेजिलियंस बढ़ी है क्योंकि रेनफेड एरियाज में वाटर कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो हमारे सारे एफर्ट हैं कि सोयल का इरोजन कम हो, वाटर का कंजर्वेशन हो, सोयल हेल्थ इंप्रूव हो। अभी मृदा का स्वास्थ्य सबसे बड़ा एक इश्यू है।
1: और आखिर में आपसे मैं यही समझना चाहूंगा डॉक्टर मांगीलाल, सस्टेनेबल खेती के मॉडल को लेकर भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसमें हम आपसे थोड़ी सी चर्चा ऑर्गेनिक फार्मिंग की भी करना चाहेंगे, जिसमें जो खादों का प्रयोग है वो सस्टेनेबल तरीके से हो और मिट्टी भी स्वस्थ रहे। तो ऐसे में ऑर्गेनिक फार्मिंग, सस्टेनेबल फार्मिंग, इसको लेकर भी कितने प्रयास हैं और कैसे इस विषय को लेकर आगे बढ़ा जा रहा है संस्थान की ओर से?
0: फूड इज मेडिसिन, उस लाइन पे हम काम कर रहे हैं। और हाल ही में हमने ICAR और ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने मिलकर एक जॉइंट मिशन लॉन्च किया है, सेहत स्टैंड फॉर साइंस एक्सलेंस फॉर हेल्थ थ्रू एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, ये सेहत है। और उसमें जो हमारी बायोफोर्टिफाइड वैरायटीज जो न्यूट्रिशियस होती है उस पर फोकस है, उसका वो क्लिनिकल ट्रायल करके उसको हम आगे कैसे लेके जाएं। लेकिन उसके अलावा जो छोटे किसान है, हमारा जोत छोटा है, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम जिसमें सिर्फ फसल ही नहीं हो, उसमें हॉर्टिकल्चर भी हो, उसमें लाइव स्टॉक भी हो, उसमें सेकेंडरी एग्रीकल्चर की एंटरप्राइजेज भी हो, सारी होगी, तो एक तो किसान की आमदनी बढ़ेगी, जो क्लाइमेटिक शॉक्स हैं उनसे रेजिलियंस बढ़ेगा, लेकिन ये वो डाइवर्सिफाइड फूड होगा तो सस्टेनेबल एंड हेल्थी डाइट जो कंट्रीब्यूट कर देगा तो वो ह्यूमन हेल्थ में भी कंट्रीब्यूट करेगा। आपको मैं बताना चाहता हूं कि आज की डेट में जो फूड रिलेटेड हेल्थ इश्यूज नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज के बहुत ज्यादा हैं, एक तो फूड और एक हमारी लाइफ स्टाइल, वो दोनों मिलकर कॉम्प्लेक्स हो रही है। तो हम एग्रीकल्चर को हेल्थ के साथ में कनेक्ट करके आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें ये सारी की सारी चीजें आती है। और इन सब चीजों के पीछे यदि हमारी मृदा स्वस्थ रहेगी, सॉयल हेल्थ हमारा फाउंडेशन है, तो हमारे पौधे स्वस्थ रहेंगे, पौधे स्वस्थ रहेंगे तो उसमें जो दाने आएंगे उसको खाके मानव स्वस्थ रहेगा, उसका चारा खाके पशु स्वस्थ रहेगा, और यदि सारा स्वस्थ रहेगा तो हमारा पर्यावरण स्वस्थ रहेगा। और इसलिए भारत सरकार का एक कमीशन है वन हेल्थ, तो ये सारा वन हेल्थ की तरफ कॉन्ट्रीब्यूट करता है और हम इसी चीज को लेके आगे बढ़ रहे हैं।
1: जी बहुत धन्यवाद डॉक्टर मांगीलाल जाट, आप कार्यक्रम में जुड़े,
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे विकसित भारत की कृषि यात्रा में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के योगदान पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर मांगीलाल जाट। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप NewsOnAIR और YouTube चैनल NewsOnAIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnstalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। Countrywide.

0: धैर्य धर इंद्रदुम्न घेन हे सांत्वना शोक त्याग कर मनु जाउछि मु श्रीहरिंक पासे पचारिबि तांकु एही कुटर कारण
1: जाओ हे देवर्षि तुमे न फेरिबा जाय अपेक्षा रे बसिथिबु आमे दुहे एही नीलगिरि तळे शोकातुर अश्रु नयन
0: नारायण नारायण नारायण

वृद्ध एक प्रवेशिले विश्वकर्मा बेसरे वृद्ध एक प्रवेशिले विश्वकर्मा बेसरे कहिले कौन कहिले पंदर दिन रे।

0: श्री श्री श्री गजपति पुरुषोत्तम देवंकर जय हो।
1: महामंत्री, श्रीगुंडीचा यात्रा निकट ही आसिला। महाप्रभु जगन्नाथंकर कृपारु एथरक समस्त शुभ अनुकूल करी रथर निर्माण कार्य आरंभ करा जायछि। वैशाख मास शुक्ल तृतीया रोहिणी नक्षत्र दिन मु संकल्प करथिली, आ सेई अनुसारे समस्त कार्य सुचारु रूपे संपादित हेई उपयुक्त रथ काठ संग्रह करा हेछि। मु अत्यंत प्रीत जे वर्धकी गण सुंदर भावरे बड़दाण्डरे रथ निर्माण करुछन्ति। एही मनोरम यात्रारे कांची राज जेमा पद्मावतींकर सहित परिणय सूत्रे आबद्ध हेई मोर नीलाद्री बिहारींकर सेवा करिबार वासना जाग्रत हेछि।
0: गजपति अनुमति देले मो कांची राजा निकट को विवाह प्रस्ताव देई दूत पठाइबि।
1: पठान्तु महामंत्री, दूत शीघ्र संवाद बहन करी आणिले विवाहर आयोजन करा जिवो। जय जगन्नाथ।

मुहरे से कहिला चंडाल अपमान देई भियाईला गोल के मुहरे से कहिला चंडाल अपमान देई भियाईला गोल।

0: आज ही श्रीगुंडीचा पहंडिसारी बलभद्र सुभद्रा सुदर्शन प्रभु जगन्नाथ रथरे विजय कले आउ किछि क्षण परे आरंभ हेब छेरा पहरा कार्य शुभ मुहूर्त उपस्थित गजपति जेतेबेले चंडाल बेशरे दुई रथर छेरा पहरा सारि नंदीघोष रथर छेरा पहरा कार्यरे निमग्न थिले ठीक सेतिकी बेले
1: आस आस पद्मावती हृदय धैर्य धरी मो साथीरे आसो

हे जगन्नाथ, तुम्हें कृपा कर बोली परा कृपा सिंधु, तुम्हें दीन बंधु, तुम्हें पुणी दुखी जनर दरदी बंधु, तेबे भक्त को दुख दरिया रे भसई दियो काहेकि प्रभु? तुम्हें कण तार धैर्य को परीक्षा करुछ? भक्त किंतु दुखरे थाई भी तुम नाम सुमरण करे, तुमको डाके तुमरी जयगान करुथाए। केशवचंद्र साहू गाई छंदी गौर द्विजंग रचनारो।

हे प्रभु तुम लीला अनंत आउ अपूर्व भक्त को तुमे केते बेले दुख तरियारे फसई दियो तो आउ केते बेले नाउरी होई भव सागर रु पारी कर सेथि पई भक्त कुहे तुमे अंधर खंजणी खंजर संगीत तुमे दुखी जनर बंधु जग बंधु जगन्नाथ। श्रीकांत दास गाई हरिहर मिश्र रचनार।

0: बंद है।
1: जी हजूर।
0: शराब पेश करो।
1: जी हजूर।
2: खोर्धा को खबर जाई छी कहे हाफिज खादा और किंबा खोजा केही आसिले नाही।
3: जहां पना खोर्धा राजा कटक आसीबार संभावना मते जणा दउ नै। काफेर माने जय जगन्नाथ रड़ी छड़ी सरकारी पेश किस लूटी नेले।
2: ओ बंद करो फौजदार। जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ हम देखिबा को चाहे काफेर हिंदू रो ठाकुर जगन्नाथ कैसा है, ओ क्या है, ओ कैसे कमबख्त हाफिज कादर को रक्षा करिबो।
3: एथिपे खोर्धा राजा हाफिज कादर पूरा दाई पेश किस टंका भलर भलर पहुंचे देवा को खोर्धा राजा को बहुत आगुर खबर दिया जायथला। ताहले पेस्टिस लुटिला किए पीर मुहाजिद घाजी खां को कुर्बानी बरुम बर्दास्त करी हबो किंतु पेस्टिस टका लुटी को आदम बर्दास्त करी हबो नि। जहांपना
2: कमबैक तो हाफिज कादर रो चमड़ा उतरी मो पेस्टिस टका कोड़ा गंडा करी असूल करीबी था पूरे खोर्धा को खास करी काफिर को खून रे खोर्धा रो आसमान को लाले लाल करी देबी। काफिर हिंदू को ठाकुर जगन्नाथ को टुकड़ा टुकड़ा करी समुद्र को फिंगी देबी।
3: जहां पना बिल्कुल ठीक कहले खोर्धा को खास लोकले एक काफेर गुड़ा को मोगल को शांति रे रखाई देबे नहीं।
1: जहां पना खोर्धा रमाना होइतबा खोजा फेरी आछि।
2: हाउ हाफिज कादर
1: नहीं जहां पना से केवाड़े उभान हो जाइछंती कहा को मालूम नहीं।
2: अच्छा कमबख्त एति साहस ठीक अछि जाओ फौजदार मन को खबर करो काली सकले मोगल फौज खोर्धा रवाना हेवे हाफिज कादर को कह दिबो नहीं खोर्धा को खास करीबा को पड़ीबो।

0: हे जगन्नाथ, तुमरी सुरक्षा पाई मु सब किछि करि पारे। एबे तकि खां पाखरे अभिनय करी बेणु भ्रमरवर को उचित दंड देवा को हबो। मोते मोते सहाय हुओ प्रभु, मोते सहाय हुओ।
1: खोर्धा राजा हाफिज खादर खोर्धागढ़ छड़ी पड़ाई जाई छे। खोर्धागढ़ सुनसान बोली खबर पाई आमे खोर्धा को रमाना हेलु नाही। हेले तीन दिन हेला हाफिज खादर जिंदा वा मुर्ता के ही धोरी आनी पारिले नाही। सब सब देखो सब कंबकत।
2: मुगल लश्कर माने गांव गंडा बण जंगल बुली बुली हालिया हेलेन। हेले हाफिज खादर रो टेर मिलु नाही।
3: आदाब जहांपना।
1: की खबर बंदा?
3: जहां पना को भेट पाई खोद खोर्धा राजा हाफिज खादर गड़ राशी पहुंचती।
1: कौन? हाफिज खादर?
3: हाँ जहां पना।
1: आसो बिरादर, आसो हाफिज खादर।
0: मु मुजरिम, मु अपराधी, तथापि मोर बिरादर मोर बड़ भाई भाबे जहां पना को आलिंगन करुचे। जहां पना के ठरे ढेर कसुर कर मोर गोस्ता के माफ करंतु नाही। जहां पना मते मते दंड दियंतु। हाँ हाँ, मते फांसी दियंतु। हाय रिजिया बेगम, फांसी खुंटे चढ़ीबा पूर्व आउ तम सहित मुलाकात ही पारला नाही।
1: हाफिज खादर,
0: आउ विलंब काहे कि हजुर? ए मु हाफिज खादर, आपन को भाई बिरादर जहां पना आपन को दरबार रे हाजर अछि। जहां पना निज हाथ रे तलवार चोटरे ए मुजरिम रो मुंडा को छिड़े दियंतु। मु बेअदब, मु मुजरिम, मु कसूर करछी।
1: होश में आओ हाफिज खादर, होश में आओ।
0: होश कौन बेहोश कौन? जहां

0: अधिक फायदा मात्र गोटे क्लिक रे बढ़िया पसिला
1: अजणा लिंक्स उपरे क्लिक करंतु नाही आरबीआई कहे
2: सचेतन हुंतु सतर्क रुहंतु
3: कस्टमर केयर तरफ फोन आसीथिला कहुथिले तमरो 50,000 रिवार्ड पॉइंट्स एक्सपायर हेइ जिवो ए लिंक परथि एपीके डाउनलोड करिनियंतु
4: ठीक लागुनी स्कैम भी हेइ पारे।

जयति जगन्नाथं तारणं कारणं च जय दुखी दुख हारि दान बारि मुकुन्दं जय सलिल जनेत्रं देवकी नंदनाय जय जय विधुनित्यं पाद पद्मे नमामि गणे नारायण रुद्र अंबिके भास्करे तथा भिर्ना भिर्ना नकर्तव्यं पंच देव नमस्तुते झंकड़े तु सदावासी सिंह वाहिनी सारोदे मम कंठे निवासाय वाक्य देवी नमस्तुते जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे परम ब्रह्म निराकार शून्य देहि गुरु अलेख।

श्रवणे भाषणे अपिवा हृदयं द्रवत्नं जत तत् प्रेम इति कथ्यते। आज्ञा जहार दर्शन श्रवण स्पर्श भाषण रे हृदय द्रवीभूत हुए ताहाकु प्रेम कहा जाए। आज्ञा तरबरिया भाव रे बेलावली ओ सखी माने भीम शरीर को जल रु नहीं आसी प्राथमिक चिकित्सा करी पातालपुर को आज्ञा नहीं गले। पिता नागराज को सब बुझाई कहिले ओ भीमंकर भल हेबा कामना करी शपथ करदेले विवाह करने शपथ करदे। नागराजा आज कले कौन अमृत।